0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुन लिया संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। कल नेशनल असेंबली के लंच रूम में बजट पूर्व स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श समाप्त हुआ, जहां कई ट्रेड यूनियन इन परामर्श बैठकों में शामिल हुए। वहीं नेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट किया। इस मंच से जुड़े यूनियनों का कहना था कि बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को करनी चाहिए थी, न कि जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी को। मुडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्टें मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को लेकर एक समान निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। दोनों रिपोर्टों के अनुसार मॉरिशस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी ने बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डरों के साथ बैठक के बाद प्रेस से ये बात कही। ऑसिनाल गवर्नमेंट स्कूल के 104 साल पूरे हो गए हैं। इसी संदर्भ में कल एक समारोह लगाया गया। इस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रपिता शशि सागर राम गुलाम की उस दूरदर्शिता को याद दिलाया, जिसके तहत मुफ्त शिक्षा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नागरिक शिक्षा पर केंद्रित नाइस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की बात कही। और विदेश में चीन ने बुधवार को ईरान से आग्रह किया कि वो जितनी जल्दी हो सके होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोल दे। साथ ही ईरान की उस प्रतिबद्धता की सराहना की कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर एक हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 5:45।
2: RM3 Radio.

0: வியாழக்கிழமை
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jani Seyaranga.

सो लेडीज एंड जेंटलमैन, संगीतम मात्रम संगीतम में मनैनाटी गंटसेपु पाटल यात्रलो संगीतम अनेदी मनस्सुनु हाईगा अंटे मार्चे योक्क मधुरमैन भाष अंटारु। ई रोजु ई शुभ गुरुवारं नाडु उदयान्न आ माधुर्यान्नी मनमंदरं अंटे मीकु पंचिपेडतानिकी चेरी उन्नानु। कलसी आ माधुर्यान्नी मनं आश्वादिद्दामा। So have a sweet, nice listening to all of you on RM3.

सादर नमन श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने प्रिय कार्यक्रम भक्ति में शक्ति में और एम्फ्री रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूँ दीविना, लेकर आई हूँ भक्ति श्रद्धा तथा आत्मिक शांति से भरी ये सुरीली सुबह। गुरुवार का दिन जो समर्पित है भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव को, हमें सिखाता है कि विश्वास, ज्ञान तथा धैर्य का महत्व। मन में श्रद्धा, हृदय में विश्वास, भक्ति से ही मिलता है सच्चा प्रकाश। तो आइए इस पावन घड़ी की शुरुआत करते हैं प्रभु के स्मरण से, गणेश वंदना से।

श्रोताओं, भजन के इन मधुर सुरों के साथ मन जैसे प्रभु के चरणों में झुक जाता है। भक्ति केवल पूजा या भजन तक सीमित नहीं है। भक्ति एक भावना है, एक जुड़ाव है जो हमें हमारे भीतर के परमात्मा से जोड़ता है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, जहाँ विश्वास है वहाँ समाधान है। कहते हैं जब हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वे अवश्य हमारे सुनते हैं। आइए अब सुनते हैं एक और सुंदर भजन।

श्रोताओं, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारे पास भक्ति का सहारा है तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। भक्ति वो दीपक है जो अंधकार में भी उजाला कर दे। भक्ति वो शक्ति है जो हर संकट को टाल दे।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका सुहाना सफर प्रोग्राम है और बस आप ही हैं जो इस सफ़र को सुहाना बना सकते हैं। सो वेलकम, स्वागत है आप सबों का हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं, अगर हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, हमारे जो गाने हैं आपके लिए हम लेकर आते हैं, कुछ अपनी पसंद के, कुछ आपकी फरमाइशी गाने होते हैं। सो कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके गाने हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में शामिल करें। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 4028074028070। लेकिन याद रखिए कि अभी कभी कभी होता है कि आप लोग वही गाने जब बार बार मांगते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ अलग गाना यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करना। और बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी एक दूसरे से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम अफेरा।
0: अफेरा जी, कल आपका फ़ोन आया था।
1: हाँ, मैंने एक गीत मांगूंगा, हो सके तो डाल देना।
0: कौन सा?
1: संगम के, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा।
0: संगम, हर दिल जो प्यार करेगा, ठीक है, हमने नोट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया,
0: शुक्रिया जी, शुभ दिन आपको, नमस्कार। और चलिए यहाँ पर हम देख, ओ यहाँ पर हमारे जो कॉलर थे शायद वो वेट नहीं कर पाए, वो निकल गए, चले गए। लेकिन यही तो होता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है जबकि हम एक कॉलर से बात करते हैं। अभी कोई बात नहीं, आप लोगों के पास टाइम है, हम लोग यहाँ 2 बजे तक हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम AJ, कविता, अनु, विमी, जय, मोहम्मद हनीफ, प्रेमा, कायतू, सूर्या, साथ में है मिंता, अजय, लक्ष्मण, इन सब का स्वागत करते हैं। रांची कहती हैं कि उनकी बेटी तनुषी जो है अभी रिवाइज, उनका रिवाइज करने का अभी समय है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। थैंक यू सो मच जय, गाना जाएगा आपके लिए। और साथ में आयशा, दीपशिका, कियारा, योविन और मॉम के नाम। वहीं पे कीर्ति चतु हमारे साथ हैं, क्रिश हमारे साथ, हेलो जी, आपका स्वागत करते हैं। गंगाराम फैमिली के लिए वी हैव बबीता, विशाल, बना पीछे आपको, आपकी पूरी फैमिली को, और हर हर महादेव। चलिए जी, यही गाना हम डेडिकेट करते हैं।

0: करते हैं आपके लिए विशाल जी, और गाना जाएगा अनिशा रंगोनी के लिए। और प्लीज़ यहाँ पर आप लोग सिर्फ गाने की फरमाइश के लिए ही, या तो फिर आप किसी को डेडिकेशन करना चाहते हैं तो वो मैसेज भेजिएगा। और यहाँ पर प्रकाश के लिए गाना होगा जो हमारे साथ हैं, वी हैव बुद्धू जी और साथ में जिमी साथ दे रहे हैं। हेलो, और वेलकम करते हैं हम यहाँ पर साहिल का, सभी हमारे दोस्तों का वेलकम है, स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगला गाना।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: लता जी की आवाज में फिल्म है चाल। इस गाने की फरमाइश आई थी बहुत पहले और गाना हमने चलाया भी था। चलिए मनोज जी, आपके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं जो कि भी होलैंड से हमें सुन रहे हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, दिन के 12:31 हुए हैं। आज है गुरुवार 7 मई और हम आपके साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गाने आपको कुछ ऐसे सुनाएं जिससे मूड बन जाए आपका। तो अभी जो हमारा अगला गाना होगा बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, इसे हमने लिया है आपके लिए फिल्म उसने कहा था से। आवाज़ें होंगी लता जी के साथ, अपनी आवाज़ मिला रहे हैं तलत महबूब।

0: खूबसूरत सा गाना आपके लिए और किसने कहा था मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि फिल्म का नाम है उसने कहा था।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए तो अगला गाना हम इनके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, पवन इंदिरा राम दोनिया, साथ में प्रतिमा चेष्टा और रेना के लिए, रंभा माधुरी, गिरवर, रेशमा, जगदीश, मनीता, मिस्टर नुरेद्दीन जो फ्रांस से हमें सुन रहे हैं, वहीं पे आज अजय की 31st वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत सारी बधाइयां आपको। थाईलैंड से भी हमें सुना जा रहा है, प्लीज़ अपने नाम भेजिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी आपका नाम यहाँ पर अनाउंस करने का। अरुण, किरण, प्रीति, नीन, दीप्ति, रीना, चांदनी, माया, रामदोस, सबू भी, वे हैव नलेश, सरिता थापा, इंदिरा, सलोनी, गया, दीन और सल्लुमिया, आपका भी हम वेलकम करते हैं। बिंता, सोनम, शारदा और सलोनी भी हमारे साथ हैं। वी हैव अ मोली, उन्होंने कहा है सत श्री अकाल, तो हम भी कहेंगे सत श्री अकाल जी। अमृता अपनी मम्मी के लिए गाना मांग रही है, उनकी मम्मी बीमार है, सो अमृता की मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, घर आ जाए, हम यही चाहते हैं। रीना, चलिए आपके लिए गाना होगा और वहीं पर ये गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे उन दोस्तों के लिए जो इस समय ड्राइव करना पसंद करते हैं, ड्राइव करते हैं और हमें सुनते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि वो टैक्सी में होते हैं तो जो पैसेंजर्स होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, हमारे ड्राइवर बाबू गाड़ी चलाते हैं और वो पुराने गीतों का मजा लेते हैं, कहते रहते हैं वाह वाह वाह, हमारा भी ज़माना था, हमारा भी ज़माना था। जी आपका ज़माना था, आपका ज़माना अभी भी वही है। चलिए तो यहाँ पर रबीना आपके लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं, फिलहाल 19-20 फिल्म का ये गाना हो जाए सभी लिसनर्स के नाम।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर
1: चलिए सुहाना सफर में केशनी दीप्ति और विकी भी जुड़े हुए हैं, यानी कि केशनी एक तरफ है, दीप्ति और विकी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 20th वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक बाउ से उनको बहुत सारी बधाइयां हमारी तरफ से, मीला रामा, अशोक, अब्दुल रशाद, मयूर, रेनू, अंजी, आमगम, साथ में हमारे हैं रूबी। सुन रूबिया तुझसे प्यार हो गया, गाना सुना है आपने, मेरे ख्याल से मर्द फिल्म का है ना, कभी चलाएंगे हम गाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम दास स्कूल के लिए गाना चलाएंगे, एंड ही सो कूल, चलिए भाई अच्छा लगा। एंड हाय दीप्स, कैसे हो आप, सब बढ़िया सब ठीक? अभी के लिए तो ऐसा है कि जब हमारे गाने चल रहे हैं तो यहाँ पर पामिला भी हमारे साथ जुड़ गई है, और शंकर हुसैन फिल्म के गाने की फरमाइश आई है मनीता जी की तरफ से। मनीता जी, मैंने कहा ना आपको यहाँ पे होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बिठाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा शो आप होस्ट करो, मनीता जी के गाने। कभी कभी मैं सोचती हूँ भी कि सच में ऐसी फिल्में हैं, लेकिन ऐसी फिल्में होती हैं और ऐसे गाने भी होते हैं। अगला गाना आप सभी लिसनर्स के नाम।
2: RM3 Radio.

एंड यस चलिए यहाँ पर हमारे खूबसूरत गीतों का सफ़र जो है जारी रखते हैं और काफ़ी सारे गाने की फरमाइश आई है, हम नोट कर रहे हैं। रेखा जी थैंक यू सो मच, नमस्ते आपको। और यहाँ पर करुणा जी कहती है नेक्स्ट गाना फॉर माय फ्रेंड्स, और वो हैं सुंदर बुबन, भी काम कर रहे हैं जेनेश हॉस्पिटल में। और साथ में यहाँ पर परी आ गई है, अब परी आ गई है तो यहाँ पर अब बड़ी मस्ती होने वाली है क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है मस्ती खोर। तो जो लोग हमें यहाँ पर हमारे साथ रूबरू होना चाहते

सकते हैं। मेक श्योर कि आप लोग हमारे टिकटॉक पे लाइव ज़रूर हमें ज्वाइन करें। और 12:50 हो गए हैं, समझ में नहीं आया कि ऐसे 50 मिनट कैसे निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, शालिनी के लिए हम नेक्स्ट गाना चलाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच शालिनी जी। और चलिए, जब विमला, परी, मनीता जी सब साथ में हैं तो खूबसूरत गीतों के सफ़र को जारी रखते हैं। वैसे यहाँ पर मनीता जी ने मुझसे एक गाने की फरमाइश की, उन्होंने कहा फिल्म का नाम है शंकर हुसैन। मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है, ऐसा तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा गाना सुनना बहुत अच्छा है और ये गाना लता जी की आवाज़ में है। तो मैंने कहा ठीक है। चलिए आस्था जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं ये गाना, सूर्या आपके लिए भी।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर।
0: चलिए यहाँ पर सुहाना सफर जो है इस प्रोग्राम में शीतल जी तंदुलवा, शारदा, अजय, प्रतिमा, श्रेया, स्नेहा, जयेश, दोताल फैमिली के लिए नेक्स्ट गाना होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट गाना हमें लेके जा रहा है 1 बजे के समाचारों की।

0: ora.
1: You're listening RM Free Radio. Radio.
0: रफी साहब के साथ अपनी आवाज़ मिला रही हैं आशा जी और चलिए इस गाने को हम अपने उन तमाम लिसनर्स के नाम डेडिकेट करते हैं भाई जो साथ दे रहे हैं और शर्मिला जी कैसी हैं आप निशा भवानी आपका स्वागत है वेलकम है निशा आप सुखी नाम से हैं निशा हाँ हाँ चलाना पड़ेगा नाजियाना आपके लिए संजय ओमी वेलकम है और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हमारे गीतों के साथ साथ यहाँ पर लंच करें तो बना पिची

0: तो आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को मेरा नमस्कार। नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई आज भी प्राथमिकता बनी हुई है, ये बात पुलिस आयुक्त ने मॉरिशस और रीयूनियन टापू के बीच संपर्क समूह की आंतरिक सुरक्षा उप समिति की कार्रवाई के उद्घाटन के दौरान कही। दोनों टापुओं के प्रतिनिधि की मुलाकात सैदेनी में पिछले सितंबर महीने में लगी एक बैठक के बाद आज लैंड बैरक्स में हुई। इस सहयोग की बदौलत रीयूनियन और मॉरिशस की सुरक्षा बल अब अवैध लेन देन के बारे में वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सक्षम है। इस बीच उमा करीम बकस के चार करीबी सहयोगियों को 100 किलो से अधिक हेरोइन की तस्करी से जुड़े बड़े ड्रग्स मामले में कड़ी सजा सुनाई गई है। जब्त हेरोइन जब्त ड्रग्स की कीमत 1.5 बिलियन रुपए से अधिक बताई गई है। ये फैसला कल असाइजेज कोर्ट में सुनाया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इस बड़े ड्रग्स तस्करी अभियान में मदद की और उसे आसान बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई है। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अफ्रीकी नेताओं और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। ये देश के लिए नए साझेदार ढूंढना और अफ्रीका की ओर व्यापार मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अवसर है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मॉरिशस और अमेरिका के कार्यवाहक और इस कार्यक्रम के आयोजक कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ ने कल फ्लोरियल में इस शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कई आर्थिक प्रतिनिधियों से भेंट की। मॉरिशस के हरे भरे दृश्यों के बीच नई पीढ़ी के गाइड्स मॉरिशस आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रामाणिकता और रोमांच पर ध्यान दे रही हैं। इन टूरिस्ट गाइड्स में ओलिविया और एरिक शामिल हैं, जिन्होंने 9 महीने पहले एक्टिविटीज मॉरिशस की स्थापना की। विदेश में वियतनाम और थाईलैंड में टेलीवर्क को बढ़ावा देने से लेकर फिलीपींस में घोषित ऊर्जा आपातकाल तक दक्षिण पूर्व एशिया की सरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधानों से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रही है। अब ये संकट इस हफ्ते फिलीपींस के शहर के सिबू शहर में आयोजित होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ शिखर सम्मेलन पर मंडरा रहा है, जहां नेता बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बात करेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। मिशन क्रॉसरोड घोंबाफू लालमाटी में तिरसठ साल के 63 years old, श्री जगदीश रामदानी जिन्हें लोग संजय नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी सती सावित्री रामदानी के मकान मिशन क्रॉस रोड घाव बाफों लालमाटी से उठाकर लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। और पाल्मा रोड कैटोबोन में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पुष्पा माला बुटन पैराशी नाम राम और जिन्हें लोग मीला नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी शनिवार को दिन के 1:15 बजे इनके मकान पाल्मा रोड कैटोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 1:15 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: RL Free Radio.

0: खाना सफर खाना सफर हमराही मेरे हमराही दिन के 1:11 हुए हैं साथ हैं हम ऑन द 7th ऑफ मई आपका स्वागत करती हूं प्रोग्राम में कैसे हैं आप वैसे यहां पर कवि किशन हमारे साथ हैं और शवि ने अभी-अभी हमें ज्वाइन किया है थैंक यू ट्रैवल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट गाना जाएगा आपके लिए क्वीन सी एंड ट्विंका शर्मिली शिमला विजादर अमिता अवनीश ईशानी संगीता सुनीता प्रिया उनके हस्बैंड सुबिराज के लिए जिनका आज जन्मदिन है मिस्टर युगसाली जी जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम रोइंगन आइलैंड Hello and welcome. All right, we have Ragini, Lolita, Rajini, Mohabiyat, Samir, Anuradha and Anju. So, chaliye, next gaana aapke liye lekar aaye hain hum. Film ka naam hai Pyar Kiya Tu, Darna Ke. Bacha, isi se inspired hue hain shayad. Shuru mein music kuch aise hi aata hai. Usme gaadiyan dikhate hain, do pyar karne wale dikhate hain. पूरी रोड दिखाते हैं ऐसे पूरा सीन मेरी आंखों के सामने आ गया शायद आपके भी फिर आता है गाना
1: मोहब्बत का न

फिल्म का नाम है राही बदल गई और ये गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम आप सभी लिसनर्स के नाम। तरुण हमारे साथ हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अगला गाना आपके नाम।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए देखते हैं, हमारे कुछ और दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, रेडियो मनोरंजन RM3 प्रोग्राम चल रहा है सुहाना सफर वेदिता के साथ, और वहीं पे मोहिनी, सरीमा, सुरेश, प्रियंका जो कि लावांचो के पोस्ट ऑफिस में काम करी हैं, अपनी पूरी टीम के लिए गाना मांग रही हैं। बेचारी अभी काम करना है उनको, पता है ना बहुत सारे काम होते हैं। सो बोको आज टू यू, हाँ थैंक यू सो मच। और चलिए यहाँ पर माया जी, आपका गाना हम ढूंढते हैं थोड़ी देर में, प्लीज़ थोड़ा डिटेल्स दीजिएगा। रागिनी जी हमारे साथ हैं, एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर एस विथ्रिविल। हेलो जी, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड कीप स्माइलिंग। ऑफ कोर्स हमारा तो काम ही है हंसना मुस्कराना और मुस्कराहट बांटना। चलो जी मिस्टर विथ्रिविल, हमसे पूछ रहे हैं विच कंट्री इज दिस, दिस इज मॉरिशियस एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन। ठीक है, थैंक यू। और अभी के लिए जो गाना होगा हम राफा आपके नाम डेडिकेट करते हैं। उमा, मुझको एक गाना सुनना है, तेरे मेरे बीच कैसा बंधन है। वो गाना कल ही चलाया उमा जी आपने, अगर सुन लिया होता, अगर ये बंधन हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता ना तो आप कल गाना सुन लिया होगा। और ये गाना ए जी आपने मांगा था ना, हाँ अंजू के लिए, आई स्टिल रिमेम्बर। अच्छा, फिल्म का नाम है तकदीर कैसे कोई जाने। अनुराजा जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मंडे को हमने चलाया था ये गाना। स्वराज कैसे हो आप, हाय नीता राय कैसे हो आप, दीपक जी आपका स्वागत करते हैं। एंड नीता राय फ्रॉम मलेशिया, ओ वाओ नाइस, मलेशिया में मुझे क्या याद है, मलेशिया में मुझे वो पैर का मसाज याद है, जब आप इंसान शॉपिंग करते करते करते करते थक जाते हो, आप बैठ जाते हो, फिर वो आपके पैर का मसाज करते हैं, और मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से याद है। वो जो गेंटिंग आइलैंड है, जब आप ऊपर जाते हो और बीच में वो शॉप आता है, तो वो लड़कियां कहती हैं माँ के लिए ले लो, बहन के लिए ले लो, दो ले लो, एक माँ के लिए ले लो, एक बहन के लिए ले लो, और हम लोग इतना हंसे, वो लोग बेचारे ट्राई करते थे हमसे बात करने की, एंड दे वर सो क्यूट, सो फनी एट द टाइम। एंड चलिए जी यहाँ पर मनीषा की तो बहुत सारी यादें हमारी, वैसे यादें हैं जो हमारे इन गीतों के साथ हैं, पता नहीं अगले गाने के साथ हमारी याद कहाँ से कहाँ चला जाए।
1: RM3 Radio.

0: RL3 Radio. Radio. Radio.
1: फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की इस गाने की फरमाइश की गई थी और ये गाना बड़ी मुश्किल से हमें मिला है. चलिए तो ये गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे हमारे उन तमाम दोस्तों के लिए जो साथ दे रहे हैं, जैसे कि पूनम अनंत. आपका स्वागत है प्रोग्राम में.

0: का सफर।
1: चलिए जी, गाना सुनने के बाद सबके अंदर जो हमारी प्यारी प्यारी लेडीज हैं हमें सुन रही हैं, तो वो कहती है साधना का भूत तो अंदर ही चढ़ गया होगा उनको। हाँ, तो चढ़ना ही चाहिए ना, हम प्रोग्राम करते हैं इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा निदेश वीर सिंह दिनेश गोपी के नाम हम डेडिकेट करेंगे, और साथ देने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पर कुछ मैसेज आए हैं, सीला हैं थ्वाबुजिक से, और वो नेक्स्ट गाना अपने हस्बैंड को याद करते हुए बस सुनना चाहती है। और वहीं पर ललिता जी हैं कालबास से, गाना होगा उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे अहमद के लिए, वैसे वो कहते हैं कि भाई हमें तो अभी फीवर हुआ है और बहुत दर्द भी हो रहा है। नेक्स्ट गाना टू माय लव अफेज जो ऑस्ट्रेलिया में है, उनके लिए गाना होगा गुड आफ्टरनून जी। ये कौन है? ये है अनिता फ्रॉम फ्री कॉन्फ्लाक। नेक्स्ट गाना आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। चलिए यहाँ पर जो नंबर है 4028070700 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आपके मैसेज 5250620 यानी 5250620 पर।
2: RM3 Radio.
1: जब भूत की बात चली है तो मुझे याद आया कि पुराना मंदिर, ये मूवी मैंने भी देखी है। मैं बहुत छोटी थी और आंखें बंद कर करके ये मूवी मैंने देखी थी, इसलिए मूवी मुझे याद नहीं आ रहा। बच्चे थे ना, डर जाते थे, तो पहले जब शादी होती थी तो अभी जैसा रिसेप्शन नहीं होता था, लोग फिल्में लगाते थे, सब फिल्में देखते थे, इसलिए मेरी

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और ये गाना साहिल की तरफ से उनकी दादी माँ के लिए, यही गाना हम चलिए आप सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम डेडिकेट करते हैं जो खाना खा रहे हैं और बैकग्राउंड में हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं।

चलिए जी, आप भी जहाँ से भी हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। लीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अगला गाना भी हो जाए उनके लिए। लोगों का मिलना, फिर बिछड़ना और फिर उसके बाद खूबसूरत यादें बनाना, है ना? कुछ यादें जो रुलाती हैं, कुछ यादें जो हंसाती हैं। अभी के लिए नेक्स्ट गाना जो होगा आपके लिए बड़े दिल वाली फिल्म से लेकर आए हैं। अभी के लिए तो लता जी के साथ आवाज मिला रहे हैं किशोर कुमार। एंजॉय करिए। बबीता निमन, स्वागत है आपका।

0: RM3 Radio.
1: और इस प्यारे से गाने के साथ जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया. और चलते चलते यहाँ पर जो गाना होगा डेडिकेट करते हैं सभी हमारे लिसनर्स के लिए. थैंक यू नीलिमा, थैंक यू प्रिंसेस वी, थैंक यू तस्लीमा. हमारी प्रोग्राम को एंजॉय

करने के लिए और यहां पर अलियास बाबा थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अब हम चलते हैं आपसे मुलाकात करेंगे कल भूलिएगा नहीं दिन के 12 बजे थोड़ी देर में आप प्रोग्राम सुनेंगे नाट्य कला

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 2 बजे हैं।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अफ्रीकी नेताओं और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रही है। ये देश के लिए नए साझेदार ढूंढना और अफ्रीका की ओर व्यापार मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अवसर है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मॉरिशस और अमरीका के कार्यवाहक और इस कार्यक्रम के आयोजक कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका के सीईओ ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कई आर्थिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई आज भी प्राथमिकता बनी हुई है। ये बात पुलिस आयुक्त ने मॉरिशस और रीयूनियन टापू के बीच संपर्क समूह की आंतरिक सुरक्षा उप समिति की कार्यवाही के उद्घाटन के दौरान कही। दोनों टापुओं के प्रतिनिधि की मुलाकात सदेनी में पिछले सितंबर महीने में लगी एक बैठक के बाद आज लाइन बैराक्स में हुई। इस सहयोग की बदौलत रीयूनियन और मॉरिशस की सुरक्षा बल अब अवैध लेन देन के बारे में वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सक्षम है। और इस बीच उमा करीमबाकस के चार करीबी सहयोगियों को 100 किलो से अधिक हेरोइन की तस्करी से जुड़े बड़े ड्रग्स मामले में कड़ी सजा सुनाई गई है। जब्त ड्रग्स की कीमत 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की बताई गई है। ये फैसला कल असाइजेस कोर्ट में सुनाया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इस बड़े ड्रग्स तस्करी अभियान में मदद की है और उसे आसान बनाने में भी भूमिका निभाई है। विदेश में ओशन वाइड एक्सपेडिशन ऑपरेटर ने कहा है कि दो लोग जो हंटा वायरस क्रूज जहाज से गंभीर हालत में निकाले गए थे, इलाज के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ऑपरेटर ने बताया कि तीसरा यात्री जो स्थिर हालत में है, एक उड़ान में था जो देर से रवाना हुई। एमवी होंडियस अब स्पेन के कैनरी द्वीपों की ओर जा रही है, जहां पहले ये 3 दिन तक वेस्ट अफ्रीका के तट के पास स्थित काबवेदे के पास लंगर डाले हुए थे। 3 निकाले गए यात्री ब्रिटिश, डच और जर्मन थे। ओशियन वाइड एक्सपेडिशन ने कहा है कि 65 वर्षीय जर्मन यात्री उस जर्मन महिला के साथ नजदीकी संबंध में था जिसकी 2 मई को जहाज पर ही मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। Mot seulement Sagittaire, golf round about, mot choisi mais. Mot seulement Sagittaire, golf round about, mot choisi mais. Basat Saleke, 62 years old. Shri Satyadev Dhanukdhari, Shri Satyadev Dhanukdhari. Jinhe log Danish naam se jante the. की मृत्यु हो गई है, वे पहले कॉर्पोरल एसएमएफ थे और कैंकैरी दर्श के मालिक भी। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी आशा देवी दनुकधारी के मकान मोसलमा साजिते गोल्फ राउंड अबाउट मोसवाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारो आकाशिया कुतेज कि शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कांकारोल केनिया प्लेन मायों में 80 साल की 80 years old श्रीमती मती गणेश, श्रीमती मती गणेश पैदाशी नाम कुनू और जिन्हें लोग सती नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रेओल की रहने वाली थी। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी बेटी छाया

0: Murulai Kimakan, Kankarul, Kenya Plain Mayon, Seutakar, Kankarul, Kenya Plain Mayon, Hikishmashan Bumi, Jai Jaigi, Commission Tumura, 10 a.m. और मिशन क्रॉस रोड घों बाफों लालमाटी में 63 साल के 63 years old श्री जगदीश रामदानी जिन्हें लोग संजय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी सती सावित्री रामदानी के मकान मिशन क्रॉस रोड घों बाफों लालमाटी से उठाकर लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
6: स्वागत करते हैं आप सभी का श्रोतागण और दर्शकगण जो हमारा साथ दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं नाट्य कला, नाटक पर आधारित यह खास कार्यक्रम, खास तौर पे सभी नाटक प्रेमियों के लिए। देखिए, नाटक वह जीवन का मंच है जहाँ पे हम अपने अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। हमने अपने अनुभवों को एक्टिंग द्वारा, अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं और एक कहानी के जरिए लोगों तक, प्रेक्षकों तक पहुँचाते हैं। आज हम एकदम गहराई में उतरेंगे क्योंकि स्टेज जो है, नाटक रंगमंच जो है, एक क्राफ्ट है, एक स्किल है, एक कला है जहाँ पे कई जो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर एक कहानी को रंगमंच के रूप में, थिएटर के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, आज के आधुनिक युग में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है, इस समय नाटक किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जाता है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं चर्चा करने के लिए रामनाथ जीता कॉलेज से हमारे साथ है गुरुजी चेतन हजूरी जी। आप हिंदी एजुकेटर है और नाटक प्रेमी है, अभिनेता है, डायरेक्टर है, लेखक है और साथ ही साथ आदर्श सितोहल जी, आप वाकवा रंगभूमि कला मंदिर से है, आप डायरेक्टर है वहाँ के और नाटक अभिनेता है, लेखक है, डायरेक्टर है, दोनों का हम स्वागत करते हैं। दोनों का नमस्ते।
7: नमस्ते।
6: तो चलिए गुरु जी, आपसे हम शुरू करते, चेतन जी आपसे हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत सालों से नाटक प्रस्तुत करते हैं। जब भी मिनिस्ट्री की ओर से, मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की ओर से उसका कंपटीशन चलता है, आप अपनी कॉलेज की ओर से, जो रामनाथ जीता कॉलेज है उसकी ओर से बच्चों को लेकर आप कंपटीशन में जाते हैं। इतिहास में नहीं जाएंगे लेकिन बहुत सारे नाटकों का आपने मंचन किया है, खासतौर पर जो हमारे इतिहास और हमारे भाषा से संबंधित। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आप किस तरह से बच्चों को मंच देते हैं?
7: जी देखिए, वैसे जैसा कि कार्यक्रम से पहले हम चर्चा कर रहे थे, अब नाटक एक विषय के रूप में स्कूल में आ चुका है। सो नियमित रूप से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है नाटक की ओर, और नाटक का प्रशिक्षण जब हम देते हैं तो एक तो जो टेक्निक्स हैं वो तो सिखाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी सिखाया जाता है कि नाटक के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारी जो समाज के जो मुख्य विषय हैं, जो समस्याएं हैं, या धार्मिक ग्रंथ के जो संदेश हैं, उसको कैसे लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि नाटक एक एक माध्यम है, एक जरिया है। तो इस प्रकार से हम उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, और जब भी प्रतियोगिता का समय आता है तो उन्हीं बच्चों में से हम जैसे कि ऑडिशन करते हैं और चयन करते हैं कि कौन नाटक प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
6: और आपके नाटक हमने देखे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स का आप प्रयोग करते हैं, खास तौर पे जो स्टेज क्राफ्ट से संबंधित जो टेक्निक्स है उसका भी प्रयोग किया जाता है। आदर्श दोहल जी, आप भी नौजवानों को बहुत सारे मौके देते हैं, खास तौर पे अपने मंच पर रबाकवा रंगभूमि कला मंदिर की ओर से उन लोगों को आप अभिनेता के रूप में मौका देते हैं, ये लोग आकर स्टेज पर आकर प्रस्तुत करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कौन कौन से किन किन किन कहानियों को आपने मंच पर प्रस्तुत किया है।
8: जैसे आपने कहा कलाकार उनको हमेशा नाटक वे करना चाहते हैं पर वे डोंट हैव अ प्रॉपर स्टेज, सो रंगभूमि इज हियर फॉर दैट। नाटक जो अभी हम कर रहे हैं, इट्स जैसे आपने देखा था गत बार भी हमने कहा था, जो सोसाइटी में हो रही हैं, जो समाज में हो रही हैं उस पर आधारित, पर अभी मैं ज़्यादातर प्रकृति पर काम कर रहा हूँ। अभी जो हमने प्रस्तुत किया था समय चक्र, वो धरती माँ पर आधारित था, तो अभी हम ज़्यादातर जो नेचर वाइज जो उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं।
6: बहुत ही सुंदर, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आदर्श सितोहल जी के ही रबागवा रंगभूमि कला मंदिर द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही सुंदर नाटक वीरांजलि नाटक, उसका टाइटल है, जो नेशनल ड्रामा फेस्टिवल 2024 में इसकी प्रस्तुति हुई थी हिंदी लैंग्वेज के कैटेगरी में और फाइनल तक गए। तो चलिए उसका एक छोटा सा अंश, मतलब वीरांजलि का एक छोटा सा अंश इस वीडियो में साथ मिलकर हम देखते हैं।

0: नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: आदर जी, आपकी छोटी सी वीडियो को हमने देखा है, बल उसी पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न होते हैं। हमने देखा किस तरह से आपने बहुत सारे लाइट्स, स्टेज क्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, आपने बहुत सारे लाइट्स का प्रयोग किया है, स्मोक का प्रयोग किया गया है, एक वेब को आपने दिखाया है, मास्क का भी आपने प्रयोग किया है। तो आप अपनी कहानी को ये आधुनिक उपकरणों को लेकर किस तरह से कहानी को आगे आप ले जाते हैं?
2: जो आपने देखा है पहले, लेट्स मेक अ ब्रेक डाउन, क्यों ऐसा किया, क्यों इस तकनीक का इस्तेमाल किया, हम पहले ये देखते हैं। जैसे पहले आपने लाइट्स की बात की है, और जो जाल हैं ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक माया जाल है, और एक कैरेक्टर उस जाल में फंसा हुआ है, निकलना चाह रहा है, पर ऊपर से एक दूसरा कलाकार आता है, उसके चेहरे पर मास्क है, तो वो इट्स सिम्बोलिक, हम दिखाते नहीं हैं, पर इट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड फ्रॉम योर ओन आइडिया, ये क्या है, हम क्या रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। एवरी वन हैज इन हिज ओन व्यू अपन दैट। सो जब वो आ रहा है, वो निकलना चाहता है, जैसे कहा इसमें वो ड्रग्स के बारे में, बचा ली मुझे माँ, मुझे क्षमा कर ले, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुना, वो निकलना चाहता है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे फिर से उस चाल में फंसा रहे हैं। लाइट्स वो चेंज होता है, हम रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जब टेंशन होती है तब रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जब सैडनेस दिखाते हैं तो ब्लू लाइट, अभी कुछ टेंशन है और इंटेंस सीन है तो रेड लाइट के साथ हमने कुछ, जैसे आपने देखा, लाइटिंग इफेक्ट्स भी, जैसे ठंडा इफेक्ट्स भी डाले हैं टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल, और वो स्मोक भी विजुअली इट्स मोर ब्यूटीफुल जब आप देखते हैं, और वो जाल जो वे खींच रहे हैं वो सोसाइटी को ही दिखा रहे हैं, कहाँ आप यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सो इट्स ऑल टू मेक वेम फील इट्स अब्स्ट्रैक्ट, या अब्स्ट्रैक्ट है आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टर ने क्या उसने क्या कहना चाहा है, तो इट्स मोर अब्स्ट्रैक्ट। हम क्यों ये सब का इस्तेमाल करते हैं, फॉर विजुअली टू मेक एन इम्पैक्ट, बट ऑल्सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट जो लेवलिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं, लेवल्स का हमने इस्तेमाल किया है, इन द स्टॉट जो मनुष्य मास्क के साथ जो बॉस खड़ा है, ही इज ऑन वन स्टेप, एक लेवल ऊपर। ये क्यों दर्शाते हैं, आसान भाषा में कहें, आप राजा और देखिए प्रजा को देखिए, वेयर शुड बी अ डिफरेंस। सो लेवलिंग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम पोजीशन दिखा सकते, जो ऊपर हैं, जो नीचे हैं, और जो फ्लो है वो किस ढंग से कैसे चल रहा है, कैसे आ रहे हैं, तो उस पर भी हम बहुत काम करते हैं।
1: मतलब किसी कहानी को नाटक के जरिए प्रस्तुत करना, बहुत सारी बिंदुओं पर, बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है, खासतौर पर जो आपने कहा है
2: जी।
1: और साथ ही साथ मैंने देखा आज के उपकरणों, एक्स्ट्रा जो सेटिंग्स है, ना कि आप ह्यूमन को ही, कैरेक्टर्स को ही, एक्टर्स को ही उसका प्रयोग करें, बल्कि आपने प्रॉप्स का प्रयोग किया है, आप ज़्यादा प्रॉप्स यूज करते हैं मैंने देखा
2: जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस नाटक के लिए क्योंकि ये छोटा सा स्केच था तो टाइम लिमिट भी बहुत कम था, तो वी हैड टू शो समथिंग, छोटे से समय में हमको बहुत कुछ दिखाना था, तो इसलिए प्रॉप्स का इस्तेमाल हमने किया ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी में समझ आए, वरना अगर वो ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट होता, जैसे हम भारत में देखते हैं या दूसरे देशों में देखते हैं, तो विदाउट दिस प्रॉप्स इट्स ओनली एक्टिंग। बट मैं हमेशा कहता हूँ, इन मॉरिशस वी डोंट हैव अ प्रोफेशनल थिएटर स्कूल, लोग नाटक उतना नहीं जानते, वो जो हम कर रहे हैं वही देखते हैं, या अन्य टोलियों को देखते हैं, या फिल्म को देखते हैं, उसको रेफरेंस लेकर वे नाटक देखते हैं। तो अगर वी हैव टू शो लाइक रियल थिएटर, संस्कृत थिएटर की बात कर लीजिए, वो एक्टिंग टेक्निक्स की बात कर लीजिए, तो इट्स वेरी वास्ट। सो उन लोगों को, मॉरिशस के जनताओं को भी समझ में आना होगा ना हम क्या दिखाना चाहते हैं। अगर वी हैव टू थिंक लाइक जो नाटक इट्स ओनली एक्टिंग एंड टेक्निक्स विदाउट एनी प्रॉप्स, मे बी the connection between the audience and the actor will be not enough for me in Mauritius.
1: फिर भी एक डायरेक्टर अपनी कहानी को वो कैसे प्रस्तुत करता है स्टेज पर, वो डिपेंड करता है डायरेक्टर पर, किस तरह से अनेक जरिए होते हैं। तो चलिए इस कहानी को और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आपको दिखाते एक बहुत ही सुंदर वीडियो जहां पे रामनाथ जीता कॉलेज द्वारा उनके अध्यापक जो चेतन यहाँ पे है और उनके छात्राओं द्वारा प्रस्तुत बहुत ही सुंदर नाटक जन आंदोलन, इसकी प्रस्तुति हुई थी नेशनल स्केच कॉम्पिटिशन 2024 में हिंदी कैटेगरी में, और उसी का एक अंश इस वीडियो में साथ मिलकर देखते हैं।

आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं हर एक मॉरिशस वासी के रग रग में समाया हुआ खून हूं, रक्त हूं, लहू हूं। हमारे देश को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाला

मैं हर एक नए दिन का उगता हुआ सूरज हूं। घर घर का अंधकार दूर करने वाला उजाला हूं। मैं हर प्राणी को पोषित करने वाली हरियाली हूं। जीवन दान देने वाली प्रकृति हूं। प्रकृति हूं, प्रकृति हूं। मैं आप में हूं और आप मुझ में हैं। हम सब एक हैं। मैं आपकी जन्मभूमि मॉरिशस हूं। आप सभी मेरी संतान हैं, परंतु मेरी

चला गया। जहां देखो भ्रष्टाचार, जहां देखो भेदभाव, जहां देखो मनमुटाव,

0: से कोई तमाशा चल रहा है। तमाशा देखना जैसे हम मॉरिशस वासियों की आदत हो गई है। अरे हमारी मातृभूमि रो रही है, चीख रही है।
1: बहुत ही सुंदर हमने देखा, एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत सारी बातें अभी उभर कर सामने आ रही है। वीरांजलि के बाद जन आंदोलन, हमारे साथ है चेतन हजूरी जी। आपने मॉरिशनों को एक एक्टर के रूप में दिखाया, मॉरिशस को और मॉरिशस फ्लैग को आपने कलर के रूप में दिखाया। एक बहुत सारे प्रश्न, एक सीधा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अगर हम कोई भी डायरेक्टर आता, कोई भी डायरेक्टर इस नाटक का मंचन को डायरेक्ट करता, तो वह फ्लैग का प्रयोग करता। लेकिन जो आपने रंग डाला है सामने, बहुत ही सुंदर था। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था, आप क्या दिखाना चाहते थे, और किस तरह से आपके विचार में ये टेक्निक आया?
2: देखिए, विचार तो मेरे अकेले का नहीं है, हम एक टीम में काम करते हैं। तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो सभी लोगों का इनपुट रहता है।
1: अच्छा,
2: ये एक कलेक्टिव प्रयास रहता है कि सभी अपना अपना विचार देते हैं, फिर हम सभी विचारों को मिलाकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि झंडा दिखाने के बजाय हमने रंग, जो पाउडर रंग है, वो दिखाया। एक तो लक्ष्य यही था बताना कि हमारे झंडे के हर एक रंग का अर्थ क्या है। लेकिन आपने सुना होगा अभी डायलॉग में कहा कि हम सब एक हैं। सो रंग तो है कि लाल लहू का प्रतीक है और नीला वो हमारे समुद्र का प्रतीक है, ऐसे ऐसे। लेकिन हमारे देश में हर एक व्यक्ति एक प्रकार का रंग है। तो सभी लोग एक हैं का अर्थ है कि सभी लोग मिलकर एक होते हैं। तो जब आप पाउडर रंग को मिला देंगे, सभी एक बन जाते हैं, उसको हम सेपरेट, उसको अलग नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में यह था कि हम दिखाएं कि ये जो झंडे का रंग है, उसको जब हम एक साथ मिला लेंगे तो वही एकता है। तो हो सकता है आपके अलग गुण हैं, मेरे अलग गुण हैं, आदर्श के अलग गुण हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, लेकिन हम सभी मॉरिशस वासी हैं। सभी लोग जब मिल जाएंगे एक साथ इन रंगों की तरह, तो एकता बनी रहेगी।
1: आदर्श जी, आप एक डायरेक्टर हैं और थिएटर को, कहानी को डायरेक्ट करते हैं स्टेज पर। जब कोई कहानी को हम स्टेज पर प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेखन से लेकर, एक्टिंग से लेकर, ब्लॉकिंग से लेकर, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो इस तरह के टेक्निक्स का प्रयोग किस लेवल में आता है, जब पूरी कहानी लिख जाती है, या फिर ब्लॉकिंग हो रहा है, या फिर पॉलिशिंग हो रहा है, कब डायरेक्टर के दिमाग में ये आता है?
3: देखिए, ये हम जब हम अपना खुद का नाटक लिखते हैं, तो जब हम लिख रहे हैं और मुझे पता है कि मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूं, तो लिखते समय ही मुझे पता चल जाता है कि क्या क्या टेक्निक्स आएंगे।
1: अच्छा,
3: पर अगर मैं एक जो अडॉप्टेड स्क्रिप्ट को ले रहा हूं, जैसे कालिदास जी का शकुंतलम ले लीजिए, अगर मैं उसको प्रस्तुत करूंगा, तो मैं अपने जो मुझे जो एक्सपीरियंस है उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। पर अगर चेतन जी उसी नाटक को लेंगे, वे एज ए डायरेक्टर उनके अनुभव के आधार पर वो उस नाटक को एक अलग ढंग में प्रस्तुत करेंगे। इसी नाटक को ले लीजिए वीरांजलि, टाइटल से को सोचने के लिए हमने बहुत से विचार रखे, जैसे वीरांजलि का मतलब क्या है। ओके, वीरांजलि श्रद्धांजलि, एक लड़की मर जाती है, पुलिस वाली है, मर जाती है अपने काम करते, तो श्रद्धांजलि। फिर नहीं, उसका नाम अंजलि रख देते हैं, वीर अंजलि।
1: अच्छा,
3: ओके, वीरांजलि। तो जैसे उसको, उस टाइटल को ही हमने डिफरेंट वेज में

0: नाटक से जोड़ने की कोशिश की है, तो ये ऐसा एक हो गया। फिर टेक्निक्स की बात करें नाटक, ये नाटक हम नॉर्मल भी खेला जा सकता था, जैसे एक सिंपल सी कहानी दिखाते कि एक लड़की आती है काम पर जाती है, काम करते हुए वो कुछ बदमाशों को जो ड्रग्स के कारोबार में हैं उनको पकड़ना चाहती हैं, और फिर उनका पीछा करते करते वो मर जाती हैं, पर वो एक साधारण सा नाटक हो जाता। पर ये टेक्निक्स हम क्यों डालते हैं, ताकि नाटक और थोड़ा सा मनोरंजित हो जाए, जैसे लोगों को भी कुछ अलग देखने को मिले, ओ तो इस जैसे ये नाटक अगर चेतन जी भी करते तो शायद वे कुछ अलग प्रस्तुत करते। तो हर डायरेक्टर का एक अलग काम होता है, और इट्स मोर लाइक ए टीम वर्क, जैसे सब कलाकार अपना खुद का इनपुट देते हैं। मेरे साथ जो कलाकार हैं वे कहते हैं भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, फिर मैं कहता हूँ देखो पहले तुम पात्र को समझो, वो लड़की अपने काम करते समय वो मर गई, पर उससे पहले उसकी मनोस्थिति कैसी थी तो उसके बारे में सोचो, आंख बंद करो और वो सोचो अगर तुम उसकी जगह में होती तो कैसे करती। फिर टू पुट दैट टेक्निक्स ऑल्सो इट्स नॉट ओनली ब्लॉकिंग और मूवमेंट, इट्स ऑल्सो द पेसिंग ऑफ द वॉइस, कहाँ पर तुम्हें वॉइस को ऊपर ले जाना है, कहाँ नीचे ले जाना है। जैसे मैंने लेवलिंग की बात भी की है, जब वो पोडियम्स के ऊपर जा रही हैं तो उसका टोन कुछ अलग होगा, पेसिंग अलग होगा, जब स्टेज पर हैं, जब नीचे आती हैं बात करती हैं, तो वी हैव टू थिंक ऑल ऑफ दैट। कभी कभी स्क्रिप्ट को लिखते समय आ जाता है, या कभी कभी जब हम रिहर्सल कर रहे हैं तब हम सोचते हैं नहीं ये कुछ फीका लग रहा है, इसमें कुछ मसाला डालते हैं, फिर हम सोचते हैं तो क्या करते हैं, ये कर सकती हैं, देखते हैं अगर ये चल रहा है, चला ओके, नहीं चला कुछ और करने की कोशिश करते हैं, या अगर कुछ भी नहीं चला तो उसे प्लेन रखते हैं, क्योंकि अगर इट्स नॉट कन्विंसिंग अस हाउ इट विल कन्विंस ऑडियंस।
1: मतलब बदलाव तो हर एक स्टेज पर एक लेवल पर आता रहता है,
0: बदलाव तो एक दिन नाटक के एक दिन पहले भी बदलाव हो सकता है,
1: एक दिन पहले भी
0: जी, क्योंकि हमारी टोली काफी बड़ी है, अभी 50 साल हो रही है, बहुत से कलाकार जुड़ते हैं, तो जब भी हम नाटक प्रस्तुत करते हैं तो दो तीन नाटक और मंचित हो रही हैं कुछ और जगह या और कंपटीशन पर, तो वह जब हमारा रिहर्सल देखने आती हैं तो आप देखेंगे या गुरुजी देखेंगे तो कहेंगे हरीश तुमने ये क्यों डाला है, ये नॉट्स मेकिंग सेंस, तो वी गेट फीडबैक, फीडबैक के आधार पर भी हम सोचते हैं अरे हाँ यार हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर वी ट्राई टू वर्क ऑन इट वन डे बिफोर। ऐसा नाटक के दिन भी हो सकता है, आपने सोचा है आप थिएटर में जाएंगे, आप इस प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, उस प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, या ये लाइट डालेंगे वो लाइट डालेंगे, पर क्या होता है उस दिन वो लाइट्स नहीं है, वो प्रॉप्स नहीं है, या खराब हो गया है, वेन यू हैव टू इम्प्रोवाइज। सो फॉर एन एक्टर इट्स मोर इम्प्रोवाइज, क्योंकि हमारा फिल्म के जैसे रीटेक कट नहीं है, इट्स लाइव। Every situation, it's not only that you have done rehearsal and you have to perform it on stage. It's also adaptation and आपको कोई भी हादसा नहीं कहेंगे, situation आ सकती हैं। Like एक कलाकार वो चला गया, उसे एक बाल्टी उठाना था वो भूल गया, अगला कलाकार आ रहा है तो उस समय तुम क्या करोगे, उसे किक नहीं मार सकते हो, तो यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग, सो इट्स ऑल्सो इम्प्रोवाइजेशन, इट्स ऑल्सो द आर्टिस्ट लाइक उसकी मनोस्थिति भी उस पर भी काम होता है, इट्स नॉट ओनली लाइक रिहर्सल जो आप देखते हैं, इट्स अ लॉट मोर देन दैट।
1: मतलब नाटक का मंचन शुरुआत से लेकर लेखन से लेकर स्टेजिंग तक बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन हर एक लेवल पर बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि किस तरह से आप अपने विचार के द्वारा अपनी कहानी को प्रस्तुत करेंगे ये आप पर निर्भर होता है एज अ डायरेक्टर। तो छलांग मारती है, एक बार फिर से आते हैं जन आंदोलन में, वहाँ पर आपकी वीडियो में हमने देखा कि आपने एक स्क्रीन का प्रयोग किया है। यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, अगर इतिहास में जाएंगे तो पहले के जमाने में स्क्रीन नहीं था, लेकिन नाटक बढ़िया रूप से प्रस्तुत किया जाता था। अभी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपने स्क्रीन का प्रयोग, लेकिन हर जगह पे नहीं, तो स्क्रीन प्रयोग करने के पीछे लक्ष्य क्या है और कहाँ पे आपने स्क्रीन का प्रयोग नहीं किया जबकि आप कर सकते थे?
2: जी तो देखिए, एक तो यह जो नाटक हमने मंचित किया था उसमें जगह बदलती है, गांव है, फिर पोर्ट लुइस का जो एस्प्लानाड वाटर फ्रंट है।

0: वहाँ पर वासुदेव बिस्मिल दयाल जी ने बहुत बड़ा महायज्ञ किया था, वो दिखाना था। तो बड़े बड़े सेटिंग होने चाहिए, लेकिन छोटा स्केच कॉम्पिटिशन था, ये एक बात है। दूसरी बात, बड़े बड़े सेटिंग लगाएंगे तो खर्च भी होता है, ये एक बात है। दूसरी बात, ऐसे एक्सपर्ट आपको चाहिए जो सेटिंग कर सकते हैं। और हमारी समस्या यह है, स्कूल की समस्या यह है कि हमारे जो प्रतिभागी हैं, हमारे जो छात्र हैं, वे बदलते रहते हैं।
1: अच्छा।
0: हमने कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया, तीन चार साल के बाद वे हमें छोड़कर चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, उनको फिर से प्रशिक्षण देना, उनको तैयार करना, तो ये एक कंटिन्यूटी नहीं रहता है कि एक एक एक व्यक्ति तैयार हो गया है यह कार्य करने के लिए, तो वो हमारे साथ नहीं रहता, उसको जाना पड़ता है, तो ये हमारी दिक्कत होती है। तो फिर हमने सोचा कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो जहाँ पर फाइनल्स खेला गया था वहाँ पर यह सुविधा थी कि स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, तो कुछ जो ऐसी जगह है जो हम सेटिंग के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, तो वो हमने दिखाया स्क्रीन के ऊपर।
1: एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा चेतन जी, शायद एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा अभी के लिए। मान लीजिए अगर स्क्रीन न होता
0: जी,
1: तो जगह को दिखाना था
0: जी,
1: तो आप किस तरह से दिखाते?
0: देखिए, हमारे यहाँ कह सकते हैं एक परंपरा रही है, आदर्श जी को पता होगा, हम बैकड्रॉप का प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा।
0: बैकड्रॉप का अर्थ होता है कि बैकग्राउंड में हम वो सेटिंग पेंट करते हैं, फिर वो बदला भी जा सकता है। जहाँ जहाँ पर मिड कर्टेन होता है थिएटर में, तो मिड कर्टेन में एक बैकड्रॉप लगाते हैं, फिर बैक कर्टेन में एक दूसरा बैकड्रॉप हम लगाते हैं।
1: इसका प्रयोग
0: हो सकता था, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्क्रीन की सुविधा थी, तो हमने सोचा कि खर्च भी बचा लेते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो जाएगा। टेक्नोलॉजी तो कह सकते हैं अभी लोगों को आकर्षित करते हैं आजकल, तो उसका प्रयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जैसा कि आपने कहा कि कुछ जगहों में हमने वो स्क्रीन का प्रयोग नहीं किया, हमने कलाकारों का प्रयोग किया, तो एक प्रकार से हम परंपरा के साथ भी चलते हैं। तो पारंपरिक नाटक में टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता था, तो वो सभी अभिनय के साथ होता था, ह्यूमन टैबलो के साथ होता था, जो भी दिखाना था।
1: ये मैं पूछने वाला था, मेरा अगला पॉइंट ये है कि आपके आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो पीछे है, फ्रीज पोजिशन पर थे
0: जी,
1: तो फ्रीज आप कब इसका प्रयोग किया जाता है और किस तरह से उसको और ब्यूटिफाई किया जा सकता है?
0: जी, फ्रीज एक प्रकार से वह व्यक्ति सीन में है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, और जो ही उसका समय आता है एक्टिव होने के लिए, वह डिफ्रीज हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो इसका प्रयोग हमने किया, और एक तो एक दिक्कत होती है कभी कभी, सीन कैसे चेंज करें, तो एक्टर का एंट्रेंस होता है, एग्जिट होता है, तो उससे बचने के लिए तो एक सीन जो चलना चाहिए उसको हम फ्रीज कर देते हैं, उसके बिल्कुल सामने एक सीन चलता है, तो ये सामने वाला एग्जिट करेगा, फिर वो पीछे वाला जो ऑनगोइंग सीन था लेकिन फ्रीज हो गया था, वो डिफ्रीज होकर के फिर से चालू हो जाता है, तो ये जो दिक्कत है एंट्रेंस एग्जिट का, उससे हम बच जाते हैं।
1: तो दर्शकों के लिए कठिनाई नहीं होती है कि समझना कि चल क्या रहा है स्टेज पर, क्योंकि कलाकार फ्रीज हुए है, एक कहानी चल रही थी, अचानक दूसरा कलाकार आ गया, तो दर्शकों के लिए दिक्कत नहीं होती?
0: जहां तक हमने अनुभव किया है, दर्शक इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये पीछे में एक बैकग्राउंड के जैसा हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो उनको अच्छा लगता है कि व्यक्ति ही एक बैकग्राउंड की तरह खड़ा है। और इससे अलग मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ, जहाँ पर इसका इस टेक्निक का प्रयोग हुआ था, एक अंग्रेजी नाटक में जो हमने एक एक जंगल दिखाया था स्टेज के ऊपर, तो जो कलाकार थे वे शाखाएं उठाते हैं जिसमें पत्ते आदि हैं, वो खड़े हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति पेड़ बन गया। तो सेटिंग बदलने की आवश्यकता नहीं है, नए प्रॉप्स स्टेज के ऊपर लाने की आवश्यकता नहीं है, वो शाखा वहाँ पर पड़ा हुआ था, ब्रांच जो है वो केवल उठा लेता है, वो जंगल बन गया, और यह सीन समाप्त होता है, वो शाखा को रख देता है, फिर कोई और प्रॉप वो उठा लेता है, फिर वह सेटिंग बन जाता है। तो लोगों का, कलाकारों का प्रयोग हमने किया था

0: थिंग बनाने के लिए। सो ये एक प्रकार से लोगों को आकर्षित भी करता है और ये जैसे कि कहेंगे इंटरेस्टिंग बन जाता है कि एक ही व्यक्ति वो अभिनय भी कर रहा है लेकिन वो सेटिंग भी है।
1: आपके वीडियो को हम जब हमने देखा तो एक लड़की होती है जो मॉरिशस देश को प्रस्तुत अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो एक निजी क्वेश्चन है मेरा, व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि उनको आपने घुंघरू पहना है, मतलब उस समय घुंघरू पहनी हुई थी, इसके पीछे क्या दिखाना चाहते थे और क्या कारण था?
0: देखिए, एक तो वह एक स्त्री के रूप में हमने प्रस्तुत किया क्योंकि धरती माँ है, मॉरिशस माँ है, तो इसलिए लड़की का चयन हमने किया। फिर उसको सफ़ेद कपड़े पहनाए यह दिखाने के लिए कि वो न्यूट्रल है।
1: अच्छा,
0: किसी से हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल हैं। ये पायल अंत में हमने सोचा कि ये उसको पहना लेते हैं, एक तो वो नारीत्व दिखाने के लिए और दूसरी बात जब वह चलेगी वो जो आवाज़ आएगी वो हमें आकर्षित करेगा और हर एक कदम जब वह चलेगी तो मान लीजिए कोई व्यक्ति स्विच ऑफ हो गया ऑडियंस में या सोने लगा है
1: तो फिर से वापस
0: आ जाएगा। तो एक प्रकार से लोगों को अपने साथ बनाए रखने के लिए हमने इसका
1: बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है जब किसी कहानी का मंचन हम करते हैं नाटक के रूप में। अदर जी, जो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हमने चेतन जी से पूछा, वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, इसको और थोड़ा सा हम गंभीर बना दें क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं। हम आप लोगों के विचार में झाँक कर देखना चाहते हैं कि आप लोग एक कहानी को किस तरह से प्रस्तुत कर दे। मान लीजिए आपको एक जगह को दिखाना है, पीछे स्क्रीन नहीं है ना ही बैकड्रॉप है, एक ओपन थिएटर, तो सिर्फ कलाकार है आपके पास, तो आपको जगह दिखाना है, तो आप एज ए डायरेक्टर किस तरह से उसको दिखाते?
2: ओके, कई प्रकार के हम दिखा सकते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा, एक तो जैसे आपने पहले कह दिया है कि स्क्रीन या पर्दे लगाएंगे, पर जब हमने जब नाटक किया था वी हैड टू शो जैसे एक किंगडम, राजा बैठेगा, तो क्योंकि समय बहुत कम था और छोटा सा सीन था, बट वी हैव टू शो इट। हमने क्या किया, हमने ह्यूमन बॉडी चेयर बनाया। सो चार कलाकार, उन्होंने जैसे एक सिंहासन का फॉर्म ले लिया, उस पर आकर वो राजा बैठा और बात करने लगा। सो इट्स ऑब्वियस फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, ओके ही इज ऑन अ थ्रोन। सो ये हम करते हैं। दूसरा, अगर हम स्क्रीन नहीं दिखा सकते, सेटिंग नहीं दिखा सकते या प्रोजेक्टर या नहीं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, व्हेन व्हाट डू वी डू, वी यूज इट इन फॉर्म्स ऑफ डायलॉग्स। तो क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। जैसे अगर गुरुजी की नाटक आप देख लीजिए, उन्होंने ओपन स्टेज है, मेरा भी ओपन स्टेज है, डिफरेंट सीन्स हैं, घर का सीन है, फिर आता है अड्डा, फिर आता है पब्लिक, सो इट्स ओपन, वी हैव सो मेनी सीन्स, और आप इतने छोटे से समय में, इतने कम समय में उतने सेटिंग दिखा नहीं सकते। तो व्हाट डू वी डू, वी स्प्लिट द स्टेज इन थ्री पार्ट्स, मिडल हो गया अड्डा, राइट आ गया घर, लेफ्ट आ गया पब्लिक रास्ता। देन व्हाट डू वी डू, हम लाइट के साथ खेलते हैं। जब एक सीन अड्डा में हो रहा है तो वी कंसेंट्रेट द लाइट्स, अगर आप देखेंगे नाटक में, सो इट्स ओनली इन द सेंटर, सिर्फ सेंटर में हम कंसेंट्रेट करते हैं। और जैसे फ्रीजिंग की बात हमने कहा है, वो भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट में भी वो शांडलिये और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्रीज रहते हैं जब वो मॉन्स्टर आता है, पर जब वो ब्यूटी आती है, लड़की आती है, बात करती है, वो ही कैरेक्टर वे फ्रीज आउट। एंड सो कुछ कमरे के अंदर हम दिखाते हैं, कुछ कमरे के बाहर, पर कैसे करेंगे, इट्स मोर लाइक दीज, वी यूज दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स।
1: बहुत ही सुंदर। तो आजकल के रंगमंच में एक कॉन्सेप्ट आता है पू थिएटर। पू थिएटर मतलब उनका डायरेक्टर के पास, मान लीजिए आप वे कुछ भी नहीं दिखाते हैं स्टेज पर, बस अपने एक्टिंग के द्वारा ये सब दिखाते हैं कि मैं इस जगह पर हूँ, अमुक परिस्थिति में हूँ और अमुक डायलॉग बोल रहा हूँ। पू थिएटर के जरिए अपनी कला को, अपनी कहानी को कैसे अपनी कला द्वारा आप प्रेक्षक तक पहुँचाते हैं, आइए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। आदर्श के ही वीरांजलि नामक थिएटर का एक छोटा सा अंश आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में देखते हैं।

0: तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? बहुत ही बड़ी भूल की है तुमने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो धोखेबाज कहाँ है?
1: तुम्हें क्या लगता है चालबाजी करना सिर्फ तुम्हें आता है? आज तुम नहीं बचोगे।

0: नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला।
1: यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात है सामने आती है, क्योंकि हम कहानी को स्टेज पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी में उतार चढ़ाव तो होता ही है, कभी हम प्यार दिखाते हैं, कभी मित्रता दिखाते हैं, तो कभी लड़ाई झगड़ा भी दिखाते हैं, क्योंकि ये भी एक समाज का एक पार्ट है, एक सच्चाई है। तो यहाँ पे आदर जी, आप कि वीरांजली नाटक में आप देख रहे हैं किस तरह से एक मतलब झड़पें उठ जाती है, एक लड़ाई चल रही है और कत्ल भी हो जाता है। आपने शादो का प्रयोग किया है, तो इसके पीछे आपका विचार क्या था, कब शादो का प्रयोग किया जाता है?
2: पहले हम स्थिति को समझते हैं। एक अड्डे में जैसे पुलिस आई है, लैंडिंग हुई है, तो इट्स वेरी केओटिक। सो वे उनको दिखाते हैं, पहले वे भाग रही हैं उस पोर्शन जहाँ वो लीडर जैसे वो डॉन है वो मरता है, और वो उससे हमने एक जैसे तलवार लेकर मारा है। विजुअली इट्स मोर अपीलिंग ऑन शैडो। जैसे आपने देखा शैडो के साथ आप जब काम करते हैं तो सिर्फ सिल्वेट दिखाई देता है, तो वो जैसे आपने वो तलवार लिया और जैसे बॉडी के आर पार हो गया, सो वो इफेक्ट दिखाई देता है, वो फेक नहीं लगता। और निकालते हैं तो वो सिल्वर दिखाई देता है, पर मोर इम्पोर्टेंटली आप इसे डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। यू हैव मिनी सीन्स लाइक जो फांसी के सीन्स होती हैं या कुछ जो सेंसिटिव सिनेरियोज होती
1: हैं, इस पर ज्यादा बल देंगे, खासतौर पे हमारे दर्शक और श्रोतागण जो हमें देख रहे हैं। आप भी एक नाटक का प्रस्तुति आप करना चाहते हैं, तो ऐसे सीन्स आते हैं तो आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से आप दिखा सकते हैं, या फिर कौन कौन से सीन्स नहीं दिखाना चाहते हैं स्टेज पर डायरेक्टली, तो इस पर आदर जी थोड़ा सा और इस पर एम्फसिस कीजिए।
2: जैसे अगर हम आत्महत्या का एक सीन दिखाएंगे, इट्स वेरी सेंसिटिव, सब लोग नहीं देख सकते। लड़ाई दिखाएंगे, काटना, वो सब वी कॉन्ट शो इट डायरेक्टली। वी हैव नाटक करते हैं बट वी हैव मेनी लिमिटेशंस, वी हैव मेनी रूल्स टू फॉलो ऑल्सो। जैसे हम जो औजार हैं, वी कॉन्ट टेक अ रियल वेपन ऑन स्टेज। आप एक प्योश जो लेती हैं वो भी नहीं ला सकते हैं स्टेज पर, या फायर नहीं डाल सकते। तो वी हैव मिनी रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो एज ए नोटिस ऑल्सो, एंड ये सेफ्टी के लिए भी होता है।
1: डमी वेपन का प्रयोग कर सकते,
2: डमी वेपन का जो आप देख रहे हैं वो एक तलवार नहीं है, वो एक जैसे लकड़ी का एक हाँ, तो हमने उसी का इस्तेमाल किया है, और गन भी फेक है। पर वो हमने सोचा अगर वो हम दिखाएंगे वो स्टेज पर हैं और ऐसा निशाना मार रहे हैं और ऐसा ठिशाऊ वो गिर गया, बहुत बचपना लगेगा। तो शैडो इज मेकिंग एन इम्पैक्ट बट ऑल्सो शोइंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और फांसी अगर दिखाएंगे वी कॉन्ट शो लाइक अ पर्सन इज हैंग ऑन द स्टेज, वो काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आ सकता, या यू नो वेर इज मेनी केसेस, सेंसिटिव केसेस ऑफ पीपल, वे हैव हेल्थ इश्यूज, कुछ ट्रिगर हो सकता है, तो वी हैव टू थिंक ऑल्सो अबाउट दैट। कभी कभी आत्महत्या दिखाने के लिए हम दिखाने के लिए हम सिर्फ एक कपड़ा लेते हैं, वो राउंड दिखाते हैं और शैडो में वो बस घूमता है। कभी कभी सिर्फ एक जैसे व्यक्ति खड़ा होता है और वो शैडो के द्वारा समझ गया कि आत्महत्या हुई है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट सर्टेन क्राइटेरियाज ऑल्सो फॉर द प्ले। और शैडो इफेक्ट्स वो कभी कभी मिस्टिकली, कुछ नाटक में हमने एक ही कलाकार स्टेज पर आने वाला है, उसका उसकी आवाज़ इको हो रही है, वो एक शैडो पर दिखाई देता है, दूसरे शैडो पर, तीसरे शैडो पर, और अचानक से स्टेज पर, तो वो इफेक्ट भी जैसे मूवीज के द्वारा हम स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्टेज पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? सो वी हैव दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स ऑल्सो। एंड कभी कभी हम सेटिंग भी, हम एक पेड़ लगाना था, आपने सेटिंग की बात की है मुझे याद आ गया, कभी कभी हमको वो वन दिखाना था, तो पूरा स्टेज शैडो से भरा था और पीछे हमने पूरा ब्रांचेस लगा दिया था, तो जब उस सीन की आवश्यकता नहीं थी तो लाइट्स ऑफ थे। जब वो कलाकार आए और वन में जैसे एंटर किया, सब लाइट्स ऑन हो गए, और ऑन द शैडो एंटायर स्टेज यू विल सी ओनली पेड़ पौधे लीव्स, सो यू गेट द नोशन, ओह वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वी आर इन अ फॉरेस्ट। सो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं।
1: बहुत ही सुंदर, मतलब पहले के ज़माने में वही कहानी को पहले के जो निर्देशक होते थे वो अपनी कहानी को किस तरह से कैसी किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वे लोग कहानी का मंचन करते थे। आजकल के ज़माने हम 2026 में जी रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे माध्यम है, उन माध्यमों का प्रयोग करके आप अपनी कहानी को प्रेक्षक तक किस तरह से पहुंचाते हैं ये आप पर निर्भर होता है। तो एक क्वेश्चन है मेरा चेतन जी, क्राउड के साथ, क्राउड को दिखाना स्टेज पर, तो क्राउड के साथ किस तरह का काम होता है, किस तरह से क्राउड को दर्शा सकते हैं? लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप न दें, बल्कि आपकी नाटक का एक वीडियो हम देखें जहाँ पे क्राउड का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद इस प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में साथ में देखते हैं।
3: भूल गए हैं, हाँ तेरी माँ भूल गई, कैसा आंदोलन चला था ताकि आप इस सभागार में बैठकर इस प्रकार नाटक देख सके।
4: तेरी नदियों में बह जावा,
3: चलिए अतीत का, इतिहास का पन्ना उलट कर सीखने का प्रयास करते हैं। मैं जन आंदोलन का सिपाही था, आज आपको प्रसंग दिखाएंगे।
0: नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: आपने स्टेज पर क्राउड दिखाया, कुछ लोग फ्रीज थे, कुछ लोग धीरे धीरे करके अनफ्रीज होने लगे और धीरे धीरे चलने लगे, मतलब इसके पीछे मतलब क्या था, हम क्या समझे इसमें?
5: देखिए, जो जो प्रसंग हमने दिखाया जन आंदोलन का, तो जब भी पंडित वासुदेव कृष्ण दयाल अपना अपनी गोष्ठियाँ लगाते थे तो हज़ारों की संख्या में लोग आते थे, तो वही दिखाना हम चाहते थे, लेकिन हज़ारों लोग तो हम नहीं ला सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। तो ये जो 10-12 लोग हैं, ये लोग प्रतीक हैं, प्रतीकात्मकता है कि डायलॉग्स में हम बोलते हैं कि पोर्टलिस में 40,000 लोग एकत्रित हुए थे महायज्ञ के लिए, लेकिन 40,000 लोग वो 10-15 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रतीक हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, जो डायलॉग का कॉम्बिनेशन है और जितने लोग हम दिखा रहे हैं, वो ऑडियंस को बता देता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे।
1: आपका जो कैरेक्टर जो हमने देखा है, हाथ में एक झंडा था, आपका क्या कैरेक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या था? आप एक पात्र थे वहाँ पे सिर्फ, या फिर सिर्फ एक प्रस्तुतकर्ता थे, एक लिंक था आप?
5: ये एक जो जो पारंपरिक नाटक में है उसमें एक सूत्रधार हुआ करता था, हम सबको पता है। तो आरंभ में जब हम नाटक लिख रहे थे, तो जैसा कि आदर्श ने कहा आरंभ में, यदि डायरेक्टर स्वयं लिख रहा है तो लिखते समय वह नाटक अपने दिमाग में खेलता है कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, सेटिंग कैसे होगा, वो साथ साथ में खेलता है। तो जब मैं यह नाटक लिख रहा था, तो सूत्रधार का पात्र मैं लिख रहा था, तो धीरे धीरे जब हमने मंचन शुरू किया, वो अभ्यास शुरू किया, तो हमें दिखाई दिया कि ये केवल एक सूत्रधार नहीं होना चाहिए, इसको नाटक का एक

0: भाग बन जाना चाहिए, उसको नाटक का एक पात्र बन जाना चाहिए। तो हमने दिखाया कि जो पंडित जी का जन आंदोलन था, यह व्यक्ति उसमें एक सिपाही था, वो पंडित जी का अनुयायी था, तो वही पंडित जी की कहानी सुना रहा है। सूत्रधार तो है, लेकिन एक ऐसा सूत्रधार जो उस समय मैं वहां पर उपस्थित था, उसने पंडित जी का आंदोलन देखा, वो महायज्ञ देखा, जो कुछ भी पंडित जी ने किया वह उसमें एक भागीदार था। तो वह भागीदार आज सूत्रधार बनकर वह कहानी सुना रहा है। तो सूत्रधार भी है, लेकिन वह कहानी से अलग नहीं है, वह कहानी में है एक पात्र के रूप में।
1: कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी प्रश्न, बहुत ही रोचक प्रश्न आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों अनुभवी, आप दोनों मंचन करते हैं नाटक के, और आप दोनों के अलग अलग स्टाइल है, तो शुरुआत आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। आपने पारंपरिक ढंग का मार्ग अपनाया, इसके पीछे कोई खास कारण, किस तरह से आप वही कहानी को उस अंदाज में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कारण क्या है?
0: ये देखिए, पारंपरिक तो कह रहे हैं, एक झुकाव होता है कि पारंपरिक की ओर ज्यादा झुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पारंपरिक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, पारंपरिक टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं केवल, क्योंकि जैसा कि आपने देखा वो प्रोजेक्शन है, स्क्रीन है, स्मोक इफेक्ट है, म्यूजिक है, तो ये सभी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो रहा है। और जो ह्यूमन ताब्लो है, जहाँ पर कलाकारों का प्रयोग हम कर रहे हैं सेटिंग आदि में, वो परंपरा से आई है। तो मुझे लगता है कि परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण आज की आवश्यकता है। परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस जो आ रहा है वह केवल पारंपरिक, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आएगा, लेकिन लोग अधिकतर आधुनिकता देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखना चाहते हैं, तो उसका मिश्रण हम करते हैं। और यदि जैसा ये कहेंगे प्योर पारंपरिक नाटक प्रस्तुत करेंगे, तब तो म्यूजिक भी लाइव होना चाहिए, गाना भी लाइव होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे लोग हमारे पास नहीं है जो लाइव म्यूजिक खेल सकते हैं, जो लाइव गा सकते हैं। हो सकता है जो गा सकते हैं, म्यूजिक खेल सकते हैं, वो नाटक में नहीं आना चाहते हैं, जो नाटक में है उनको गाना बजाना नहीं आता है, तो इसलिए हमें वो रिकॉर्डेड म्यूजिक का प्रयोग करना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी में आ जाता है।
1: आदर जी, वही प्रश्न लेकिन थोड़े से अलग अंदाज में, हम देखते हैं कि आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रॉप्स का प्रयोग करते हैं, पारंपरिक ढंग जो है, जो सदियों से चलता रहा है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादा आप मतलब समय के साथ चलते हैं, इसके पीछे कोई खास कारण?
2: नहीं, मैं कहूँगा ये नाटक जैसे नेसेसिटी होती है उसके हिसाब से हम करते हैं। जैसे गुरुजी जो नाटक की बात कर रहे हैं, मे बी इट्स मोर फॉर नेशनल ड्रामा फेस्टिवल या कंपटीशन वाइज, पर हम ज़्यादा गाला शोज करते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो वी यूज आर्टिस्ट हमारे पास होते हैं, पर जैसे गुरुजी ने कहा, सब जो म्यूजिक बजाते हैं, गाना गाते हैं, उनका भी एक अलग सा ऑक्यूपेशन होता है, वी कॉन्ट बी लाइक फुल फॉर द प्ले, बट हम करते हैं। जैसे इफ यू हैव क्लासिकल प्ले, वी पुट लाइव म्यूजिक विद सिंगर्स, बट वो गाला शो होता है, क्योंकि वो लंबा होता है, 1 hour 30 minutes से ऊपर, तो इट्स लाइक अ शो जो लोग देखने आते हैं। पर जो नाटक कंपटीशन के लिए करते हैं, वी कॉन्ट यूज दीज थिंग्स, क्योंकि समय बहुत कम होता है, और टेक्निकल के लिए भी, मन सजावट के लिए भी हमको 15 minutes सिर्फ मिलता है। अभी अगर म्यूजिशियंस भी आएंगे, वो सब कुछ शायद गुरुजी करना चाहते हैं, पर क्योंकि वो लिमिटेशंस हैं, पर शोज में हम इस्तेमाल करते हैं। अभी के नाटक में, जैसे जो नाटक आपने देखा है वीरांजलि, वो एक असली कहानी है जो हुई है, लोग जानते हैं, एक महिला पुलिस जो काम कर रही थी, डाई ऑन ड्यूटी, बट वी कॉन्ट यूज like direct names or to hurt the sentiments of the family, but we present the story to know, to show people, and they can relate to that. This is a modern play, modern context. Now we are bringing modern technologies. So is par hum kaam karte hain, how can we use it? Jaise abhi hum black light ka istemal karte hain, UV light ka istemal karte hain. Pehle log nahi dekhte the. Maine jo naatak kiya tha Ravan Leela, Ravan jab aata hai to jo yudh ho raha hai वो सब लोग व्हाइट में हैं, और ब्लैक लाइट जब डालती हैं तो इट्स ओनली सिल्वर लाइक, लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और एक जो बॉडी है वो ऊपर से मिड एयर, वो सिर्फ ऊपर

0: रहा है तो वो विजुअली अलग सा इफेक्ट देता है. शायद ट्रेडिशनली हम उसे दिखा नहीं सकते थे, पर इट्स अ स्पेशल इफेक्ट दैट वी कैन ऐड इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट नाउ. आप अगर देखेंगे, क्योंकि रावण वो जो काले कपड़े में है और वो ब्लैक लाइट सिर्फ सफेद पर रिफ्लेक्ट करता है, यू आर लिफ्टिंग द बॉडी सो यू गेट द इफेक्ट द बॉडी इज फ्लोटिंग. सो वी कैन यूज दीज विंग्स, जैसे आप हाथ से ऐसे पंछी कर रहे हैं, सो वी कैन शो दीज विंग्स लाइक लाइव वेव आर्टिस्ट. सो वी डोंट नीड लाइक स्क्रीन्स एंड एवरीथिंग. एंड आई थिंक मॉडर्न कॉन्टेक्स के लिए वी शुड यूज दीज विंग्स टू एनहांस आवर प्लेस.
1: बहुत ही सुंदर. तो दर्शक के रूप में मैं भी एक पारंपरिक ढंग से जो नाटक की प्रस्तुति हो रही है उसको भी मैं देखना चाहता हूँ, और आपके जैसे नाटकों को भी मैं देखना चाहता हूँ जहाँ पे टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है, डिफरेंट न्यू टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है. तो जाते जाते जाते चेतन जी, बहुत सारे सुंदर सुंदर नाटकों की प्रस्तुति आप करते हैं, तो पाइपलाइंस में कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है? लगे हाथ पूछ रहे.
2: दिमाग में है, कुछ करना है,
1: चल रहा है,
2: लेकिन अभी तक निश्चित रूप से कुछ निर्णय नहीं लिया गया है. लेकिन आप हम पर काउंट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आएगा जरूर.
1: बहुत ही सुंदर. आदर्श जी, समथिंग बॉइलिंग इन द पॉट.
0: अभी 4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ कॉम्पिटिशन के लिए, और जैसे हमारी संस्था करती आई हुई है मे बी समथिंग न्यू for directors this time workshop ke liye. So we are thinking for directors, maybe unko bhi jo new technology ke sath the evolution of modern theater, we can work on that with them.
1: Hal mein aapka ek workshop chal raha tha acting par.
0: This was out of staging and crafting, jaise how to jo log natak bilkul nahi jante uske bare mein tha. Abhi jo hum soch rahe hain, it's more for directors jo we kar rahe hain, aur wo technology ko hum aage lana chahte hain, wo अभी उसके ऊपर हम सोच रहे हैं.
1: तो लगे हाथ हमारे श्रोताओं और दर्शकों को भी बता दूं कि हाल में ही आदर्श सितोहल ने अपने ग्रुप द्वारा एक वर्कशॉप चलाया था, उसके ऊपर भी एक कार्यक्रम करेंगे, आपको विजुअल्स हम दिखाएंगे, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं हमारे MBC रेडियो द्वारा, और साथ ही साथ MBC के फेसबुक, हमारे रेडियो के फेसबुक पेज में आप हमें देख सकते हैं लाइव रेडियो प्रोग्राम करते समय, और जो हम वीडियो दिखा रहे हो उसको भी आप देख पाएंगे. बहुत ही जल्द आप एक वर्कशॉप पर आधारित एक कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए चलाएंगे. आप लोग आए हमें इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, आदर्श जी,
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद. तो आप लोग साथ देते रहिए, नाटक में आप रुचि रखते हैं तो ज़रूर यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है. आप लोग सीखते रहिए, जैसे कहते हैं कि नाटक एक दुनिया है, और इस दुनिया में जितने पात्र मिलते हैं, जितनी कहानियाँ मिलती है, उन सब को आप मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं. माध्यम यही है और लक्ष्य यही है कि समाज में एक बदलाव, समाज को सच्चाई दिखाना. अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्ते.

0: 3PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक किम्बे इस बारनी की तैयारी में है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अफ्रीकी नेता और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। ये देश के लिए नए साझेदार ढूंढना और अफ्रीका की ओर व्यापार मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अवसर भी है। मॉरिशस और अमरीका के कार्यवाहक और इस कार्यक्रम के आयोजक कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका के सीईओ ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन से जुड़े कई आर्थिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई आज भी प्राथमिकता बनी हुई है। ये बात पुलिस आयुक्त ने मॉरिशस और रीयूनियन टापू के बीच संपर्क समूह की आंतरिक सुरक्षा उप

0: समिति के उद्घाटन के दौरान कही। दोनों तापों के प्रतिनिधि की मुलाकात आज लाइन बैरक्स में हुई। इस सहयोग की बदौलत रीनियन और मॉरिशस की सुरक्षा बल अब अवैध लेन देन के बारे में वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सक्षम है। विदेश में ओशन वाइड एक्सपेडिशन ऑपरेटर ने कहा है कि दो लोग जो हंटावायरस क्रूज जहाज में गंभीर हालत में निकाले गए थे, इलाज के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ऑपरेटर ने बताया कि तीसरी यात्री जो स्थिर हालत में है, एक उड़ान में था जो देर से रवाना हुई। एमवी होनियस अब स्पेन के कैनरी द्वीपों की ओर जा रही हैं, जहां पहले ये तीन दिन तक वेस्ट अफ्रीका के तट के पास स्थित कापवेदी के पास लंगर डाले हुए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। मौसलमा सार्जिते गोल्फ राउंडअबाउट मुशवाजी में 62 साल के 62 years old श्री सत्यदेव धनुकधारी जिन्हें लोग दानिश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले कापुरल SMF कापुरल थे और कैकायरी दर्श के मालिक भी इनकी अर्थी। कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी आशा देवी दनुकधारी के मकान मुसलमान साजिता गोल्फ राउंड अबाउट मुशवाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारवा कासिया कुतेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मिशन क्रॉस रोड घों बाफू लालमाटी में 63 साल के 63 years old श्री जगदीश रामदने जिन्हें लोग संजय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी सती सावित्री रामधनी के मकान मिशन क्रॉस रोड घों बाफू लालमाटी से उठाकर लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सेनेक रोड रिवर वॉक लेन प्लेन दे होश में 58 साल की 58 years old श्रीमती संगीता रामनियाल पैदाशी नाम इंदर नारायण और जिन्हें लोग सुनीता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे कल दिन के 11 बजे इनके मकान सेनेक रोड रिवर वॉक लेन प्लेन दे होश से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। और कोंकाहुल किन्या प्लेन मायो में 80 साल की 80 years old श्रीमती मती गणेश पैदाशी नाम कुनू और जिन्हें लोग सती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रोल की रहने वाली थी। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी बेटी छाया मुरुलाई के मकान कोंकाहुल किन्या प्लेन मायो से उठाकर वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.

0: सभी को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और बेशक ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और आज हमारे साथ हैं टेक्निक पर फैजन, हमारी जो प्रोडक्शन सहायिका हैं उरुसा, और ये प्रोग्राम रितेश महाबिया द्वारा निर्मित किया गया है और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए। श्रोताओं और दर्शकन, आपको ये जानना है कि आज किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आज की चर्चा का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण का रोडमैप। आप में से कितनों को याद होगा कि इस विषय को लेकर के शायद 23 अप्रैल को हमने इस पर चर्चा की थी, और आज इस प्रोग्राम यानी कि आज के चर्चा प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे इसी विषय को लेकर, यानी कि एक पार्ट टू, एक दूसरे भाग में हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। प्लास्टिक आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन यही सुविधा अब हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। समुद्रों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा, जानवरों की मौत और स्वास्थ्य पर असर, ये सभी चिंताजनक संकेत हैं। और पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हमारे दो जाने माने अतिथि आज हैं स्टूडियो में, अभी आप देख भी सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र कुमार फुलमन जी और श्री किरण कुमार बलक जी, आप दोनों का स्वागत हम करते हैं। नमस्कार, और हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब हम बोल दी जा कि ये हमने के प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, तो हाँ, तो हमने के पिछला प्रोग्राम में बात कर ली जा प्लास्टिक के उपयोग का है चहला घटाएगी, तो सब हमने के श्रोता दर्शक लोग खातिर एगो रिकैप करें। डॉक्टर फुलमान जी,
1: धन्यवाद। सब श्रोता लोग के नमस्कार। जैसे कि तू बोला कुमाऊँ में कि गो रिकाप कर दे जा, तो हमने के जैसे बोला कि हमने के प्लास्टिक जो बा हमने के जीवन में कुमार जी नहीं सकब जा रहे बिन प्लास्टिक के, तो चाहना जाने के काहे एक इतना उपयोग होला है। और दिब्बत है कैसे गलहला बजारी जरा सीखते हैं, हमें देखबा पक्सों सीखते या मेजिकाल में, तो कैसे देखबा सेरेंग यूटिलाइज करेला जा, एक रीजन काहे आगे तो हमने यूटिलाइज कर देनी चाह बुटेई के सेरेंग, अब तो यूटिलाइज होला जब से हाई प्रॉब्लम कोविड आलबा तो जस्टिक मजा स्ट्रिक्ट रहेला सर, जिसमें कैसे ओके बोला सा सिंगल यूज यानी कि एक ही हल्ला सेविंग करके सकबा ओके बिग डे, तो ईगो एगो ऐप होता है पर उसकी ईजैन करके चाहला करेगी ये सब चीज वह। तो देखबा जब से एक बार जब प्लास्टिक इन्वेंटे होल काहे इन्वेंटे कर लें जा साइंटिस्ट लोग, जिसमें कि आदमी की हमने की सुविधा बनाई, यानी कि देखबा आगे हमने तब बूटे थी सेविंग करते नहीं चाहो, जब जब बासों गाजेज किने बुटीक में तो बूटे रहल आगे, तो वो सखी एक भाई रहल दिजम उ सखी ठोकर लग के फूट जाए, हाँ, और थ्वाजियम को मजे उतना अब फूट जाए तो अब
0: मतलब हाँ, के चोट लगी
1: हाँ, और थोड़ा भी हानि हो जाए वो खातिर, तो क्या हम प्लास्टिक अलग से बूते प्लास्टिक से हाई गो प्रॉब्लम दिजम दिखा आगे हम इतने टॉन्स बाजार लेवर तो नहीं जाना, तो अब जस्ती कौन चीज सक प्लास्टिक से भी खेला सक प्लास्टिक के कैसे मजे बुलब जाए जेका सेवी कर लेता वो प्लोई करके सब पुस में डाल देता निक मजे कैसे एक मजे ऊँ को भ्रन बोला सा नहीं सक नहीं रहेला, मैं सकबा के लेके इस्तेमाल करे जहाँ जेबा सकबा लेके मजे के इस्तेमाल करें, और जब ठीक कर ले समय धो के फिर से बस सेवी करें, तो ये खातिर मजे हमने की सुविधा खातिर को मजे बोलें जा ढेर सिक्तिया में हेल गबा देखा गर्मी गला बोलें सा फॉर एग्जाम्पल सिक्तिया लिबा ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल यानी कि जब जहाँ व्हीकल बनाई ला जा फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर उकर बुफो देखबा अब आज जब प्लास्टिक हो गल बा बहुत चीज को मजे रिप्लेस होता है, मैम देखबा आवियों में को पहुंचे प्लास्टिक से कोई रिप्लेस कर दे लो उनसे का ही बस कि ओके बोले सा लाइट वेट यानी कि कमती
0: वजन
1: वजन कमती है, और जब वह कमती वजन से भी करब तो कमती और जो फ्यूल बा वो भी कमती से भी
0: हाँ।
1: तब तो देखा जाए एक सुविधा के बैठे नहीं जा, तब जब सुविधा जब हो गल तब ऐनी जा कौन कौन प्रॉब्लम होला प्लास्टिक से ग्राहक माजे आज के विषय जिससे कितने करते हैं जा प्लास्टिक पोल्यूशन प्लास्टिक हाँ। तो हमारे भाई किरण एक पर तो रोशनी डल जाए
0: हाँ भाई बोला जितना नहीं बताओ
2: तो प्लास्टिक के सबसे बड़ा समस्या की प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक सड़ेला नहीं
0: हाँ
2: और उ तो बहुत बहुत वर्ष लेवेला डिग्रेडे हुई की बहुत बहुत वर्ष फॉर एग्जाम्पल लेब एक बुतेल प्लास्टिक पानी पी लेब तो पी के जब अगर पुबेल में बिक देब तो ठीक बा लेकिन जब समस्या हो जब वो बुतेल प्लास्टिक अपने लॉबमा में जाए तो वो एक बहुत बहुत समय लेवेला डिग्रेडे फॉर एग्जाम्पल 500 वर्ष लेवेला डिग्रेडे हो के एक दूसरा एग्जाम्पल देव पाइप पाइप जो पीटी पाइप है तो एक जी किन ल पी ले दो मिनट में तीन मिनट में तो उसमें वर्मा में बिक देव तो वो तो 200 वर्ष
0: डिकम्पोजे
2: हो के एक टेक अवे भी फॉर एग्जाम्पल 500 लेवेला वर्ष डिकम्पोजे हुए के तो ऐसे जब सब लॉबमा में जाए अक्यूमिनी हो जाए तो कौन चीज़ हो पोमे साफ है एगो आइसो आइसो बन जाए विलय जैसे बोल रहा है
0: हाँ आँखों के देखे के अच्छा नहीं लगेला हमने के देश का देख के नहीं अच्छा
2: टूरिस्ट कितना हमने तो टूरिस्ट में कितना अवेला हमने के देश में तो ऐसे नहीं अच्छा है ऐसे जहाँ पे जब तक प्लास्टिक के ऐसे पोल्यूशन देख
0: देखा कि हमने अपन धरती के चाहे ख्याल रखिए कि
2: और दूसरा क्या कौन चीज हो फॉर एग्जाम्पल एक टेक अवे में टेक अवे आगे तक टेक अवे प्लास्टिक रहा टेक अवे में एक खाना खाइ तब थोड़ा का खाना बच गल तो में लॉब में बिक देगा तो कौन चीज हो तो कुत्ता चूहा सब आश्चर्य हो और उसे कौन चीज हो तो मलाजी पैदा करी ओके और एक दूसरा एक तीसरा चीज कौन चीज है जब प्लास्टिक तो पानी चीनी करेला अब जैसे बिक देगा तो वर्षा हो
0: हाँ, पानी अक्ली तो मूर्छित के
2: पोलिब्रेशन हो ऐसे बहुत बहुत तरीके अब जस्ट एक चीज होला जब प्लास्टिक जब डिकम्पोजे होला तो पीटी पीटी टूटेला पीटी पीटी टूट के तो उसके बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक या तो नानो प्लास्टिक जो आंख से डिफिसिल तो तब हमने अब फॉर एग्जाम्पल लेयर रेस्पिरेटर था तो उसमें नैनो प्लास्टिक था तो रेस्पिरेटर था और सब हमने के
0: शरीर में जाता
2: अब कुछ खैबत फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक जला तब जब वो नदी में जाए फॉर एग्जाम्पल नदी से जब लामिया में जाए तब मछलियाँ लोग वो खाएं था तो हमने वो मछली के खाप सा तो एज एक्टिव हमने भी प्लास्टिक खाते सर एक कोजे बना जैसे करनी वैसे भरनी तो आप कौन सी कर ला एक प्लास्टिक एनवायरनमेंट में इरेस्पॉन्सिबल से दिखलेगा और भगवान कौन सी वो ही प्लास्टिक अब तू भी खाओ ये प्रॉब्लम है और जाने ना आगे अब तो इतना समस्या नहीं है आगे तो जब कमर्शियल दी जैसे बोल रहा मिला कि मौके जी की पासी हुई तो नहीं पासी हुई तो कौन सी करता
0: ऐसा शिकायत ढेर मिला बा कि जिन जिन दिन में उलो के चाहे कचरा उठावे के थे उ दिन वा ने आवे लन जा और कबो कबो ये भी मिलल शिकायत के वो जो डस्टबिन रहेला उ लोग लेके फेंक देवेला जल्दी टूट जाला अब उ लोग के जो मतलब हमनी के पास नहीं बा अब डस्टबिन की कमी पर कल बा
2: तो कुछ करब सर तो एगो सालते के काम जो पास में होल पीछे जाके सब सालते के जलाव जलाव सर तो उसमें तो अगर प्लास्टिक के पोजी है तो तब ये जलावत था तो इसमें गैस जो टॉक्सिक गैस है उसके नाम है फ्यूरान एन डाइऑक्सिन तो उसे जब रेस्पिरे कर बा तो कौन से पैदा करेगा देख ला तो इतना इतना बहुत बहुत समस्या है फॉर एग्जाम्पल जाने ला तो एक पोलवी में एक 5-6 साल पहले तो एक फ्लडिंग हाल तक जहाँ पे लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से तो देख लें कि रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिक सब ड्रह के भूसे कर दिलक तब इसी से ऐसे सब पानी सगरों पर गल तब इसी से तो देखिए इसे बहुत बहुत समस्या हो गया
0: तो प्लास्टिक के सामान भाई फुलमान जी था उसका वस्तु जो खास करके मेडिकल जो नबी बोलो मेडिकल की सेवी होला तो एक डिस्पोजल कैसे होला कहाँ होला
1: डिस्पोजल होला इंसिनरेशन से disposal surtout ben dites que bah medical waste la plupart du temps que l'hôpital met incinération hein ou comme c'est là incinéré que incinération car avec moi j'ai une seule base que ok hamni qui était et qui gossant enfouissement bah yani qui marche cause bah moi ça petit jacket de là là donc moi quand une jacket d'ail là je parce qu'il a égo premières affaires एक जो स्पेस मेडिकल के जितना वेस्ट है उकर कूड़ा करकट मेडिकल है तो इस की कॉन्टामिने कर दे तो हमने क्या जे ओके हमने के साउथ ऑफिस में डाले जा तो वो देजा कॉन्टामिने बा तो उस की हमने के जो पानी जो नेती बा सब पे कॉन्टामिने करे तो एक करकटन चाहला ओके थी इंसिनरेशन करे के यानी कि जराई के और उकर सेटेन टेंपरेचर जो जितना

0: सिंगापुर उलोक हमनी के जितना मजे कूड़ा करकट बा मजे उलोक के कूड़ा करकट मजे जैसे सीख मजे सेक सकब से बोली यहाँ कि सुखल कहा ही पास कि उलोक अपन बियोडेगाडा अब सेपारे कर दे बोली जब बियोडेगाडा अब देखा मोरिस में भी सकी से हो बियोडेगाडा अब के सेपारे कर दे बा अब से हमनी के देख बा कूड़ा करकट हमनी के जितना बा आप प्रे 60% एकर में देजा जो देशे बायोडिग्रेडेबल यानी कि देखा कैसे सर जाला पर जब देखा लेगिंग के छिलका बा तो लाखों में नितवाई कर बा जितना मजे घास बा इति बा इस सब तक कामियों सालते में डाल दिला जा मैं हाई लासे सकबक मजे कंपोस्ट बनाई तो अभी प्री 60% दिखला जा सकबक जा एकर से निकाल दे तब जब उन देरी जो 40% तो उठ के बोले सा सुखल सुखल कोरा करकट तो ओके सिंगापुर ओके जरावेला यानी कि इंसिनेरेशन में डाला ऐसे बारा के सेम निकलते थे लोग भाई बोलन उखाली आग डाल दी बनना है लोग के कंडीशन हाँ कंट्रोले करके पास ही कंट्रोले डिफरेंट कैसे के थे लोग बोलन उकर गैस निकला गैस तो उकर ट्रीटमेंट भी होला ऐसे निकाब खाली निकाल के बिके मैम उकर जब हो पानी को मचे निकली जो लोग बोलते लीचे निकली उकर भी ट्रीटमेंट होला था क्योंकि मचे सब इकर थी सब कंसीडरेशन लेके तब भाई से ट्रीटमेंट होला था सिंगापुर एकर में आगे बा और उन लोग एगो एगो लील अब लोग सिंगापुर भी हम नहीं उतर जैसे मोरी से छोटा तो उकर एगो लील बा एगो लील बा वहाँ पर जहाँ पर सब अपन को करकट विदा कर ला वहाँ पर तो वहाँ पर जरावे लन जा देखला समझ ला कैसी सिचुएशन
1: तो ये जो डिस्पोजल जो नबी पूछ ली है वो मेडिकल सामान तो हम नहीं मोरिस में बा तो रोड्रिग में भी ऐसे ही सिस्टम होला
0: हाँ रोड्रिग में भी ऐसे एगो एगो सिस्टम होला तनी उलट तनी कम मतलब पाचे वन जो हमनी से मिसलमो हाई सिस्टम ऑफ
1: मजे फॉलो कर था वन
0: फॉलो कर लन जो तब नी पचाते नी जाक मजे जस्टी ओ निवो इंटरनेशनल की कौन ची होल बैक करमा ते देखो तो जानिस जा की प्लास्टिक en résumé mais plastique suida de vela mais malheureusement jab degba go go que si balance medal ba to ke tol ba ta degba ki okor jitna okor effet négatif pas justi biker mein ta yani ki dekha हमनी हमनी जनता भी एक मजे जनता जब बोलते हैं जनता सब जैक सिर्फ मॉरिशस में नहीं है भारतीय दुनिया में बोलते हैं तो हमनी के फ्वासों जन मजे ओके इस्तेमाल करके बिगी ला जा हाई ला चाह ला जैसे एक पर काम बस ये देखा जाए इस्तेमाल करके एक मजे की देखा मजे इस्तेमाल कर दिले गुजाफिया ओके अपन को अति है पुबेल में डाल दिला तो ऊ जाके एक मजे गो एगो रिसिक्लास हो जाए तो भाई प्रॉब्लम नहीं कोजे करी मैं एक प्रॉब्लम जब कौन प्रॉब्लम होला जो कि निमन से नहीं डिस्पोज कर पा तब जाके प्रॉब्लम होला और एक अफेयर बोलते हैं इस्तेमाल जब इस्तेमाल भी होला कोनो चीज देखा कोनो कोनो कैसे बुटे प्लास्टिक गला एग्जाम्पल दे रही जब घाम में कोई एक्सपोजे कर दे बते कर मैं के हाँ प्रोड्यूस शिमिक बाइकर में तो प्रोड्यूस शिमिक बाइकर में जब घाम से एक्सपोजिशन होला तो प्रोड्यूस शिमिक निकल के प्लास्टिक में निकल के हाउ लिक्विडा में जाए यानी कि तो पानी में जाए तब ऊ जब पीबा तो ई हाँ एकदम को सकल जनता लोग के याद हो एगो तेचिन रहल आगे तेचिन ओके ऑपेसी कर लीस मोरिस में का ही ऑपेसी कर लीस बस कि ऊ एगो ऐसा सिप्सॉन्स होकर में रहल जब लैकवा जब दूध पिएता होकर में तो हाउ हाउ सिप्सॉन्स वा निकल के हाउ कर दूधा में आवा था तो दूधा में आई तब जब लैकवा जब पिएता होकर लिको में है जाता देखिए उनसे ई जाके ओके हानिकारक करता है पिटी को ला सौंती अफेक्ट करता तो समझ लें तब ये सब जब चीज देखनी सौ डिवो इंटरनेशनल बोली सा हाई सब एगो पे ही नहीं बात जो वहां पर प्लास्टिक ने से भी होला भारतीय दुनिया के संसार में जितना पे सब लोग प्लास्टिक से भी होला और हमने सब बोले मोई समते नहीं एडवांस में है सब ताले एक पर ऑफ सर
1: बिल्कुल तो हुए हमने ये सब चर्चा कर ली जा पिछला प्रोग्राम में अब तो प्लास्टिक के इस्तेमाल खत्म हुए के खातिर सरकार मिनिस्टर कैसन रोड मैप अपना होता
0: देखा
1: पिछला शुरू कर ली जादू हाँ,
0: गला शुरू कर ली तेल मर और बचाए के नेता ने मिला हाँ तो जब हमने देखनी सा कितना इतना प्रॉब्लम होता तो बोली जा नहीं चला जा एगो एगो प्लान बनाई जा जोन सकब सब प्लास्टिक को मजे के घटेले जाए गते गते एक एक उतने सब हम प्लास्टिक करे ना एक एक उतने सब हम प्लास्टिक करे बस कि जब हाई जब हमने जब हाई हाई जोन कदम उठावा थे जब एक ही बोल सा रोड मैप कौन चीज है यानी कि बोलबा कब कौन चीज कर पा बस कि एक ही कुछ नहीं सकबा कैसे तो करा बोलते हैं घर बनाए के बाद
1: एको समाधान खाते ऐसे जल्दी जल्दी जैसे
0: जल्दी नहीं सकबा करे
1: कैसे जांच पड़ताल कर लेके
0: कैसे कैसे तो घर बनाए के बाद एक एक ताके पेजी कल तक घर

0: Préparer du gold. Ou t'as Aladdin qui est Mais
1: tu as dit, c'est un homme qui est mais Gucci-Rag, il t'a ramené.
0: Ah, bah, il y a Tchara. आगे कर फाउंडेशन करबा तब कर मोती करबा कर ब्लॉक मोती करबा तो यानी कि हर एगो कदम में तो हये के नाम बाई गो रोड मैप यानी कि कौन ची करबा तो सरकार अबरी हला एगो आले गो रोड मैप करे के ओके शुरू करनी सा है और हई कैसे गलहलात को रह बोल रही लुसियन एंजे में मॉरिशस टापू पहला देश बा जो ऐसा निगो कदम उठेला का
1: बहुत अच्छी बात
0: बहुत अच्छा बा और मैम एगो सकबा बोले एक मजा निवो लाफ्रिक में हमने अनाबा संसाई सा फ्रॉम एगो पेई बा जे लाफ्रिक में जोन के बोल सा रुवांडा रुवांडा एगो पेई है लाफ्रिक में उ भी तनी अवांस बा तनी आगे बा उ तब हमने सकबा बोले देश में पेई मजा सकबा बोले लाफ्रिक में मजा ढेर चीज देख सब जितना जितना पेई बा खा लाफ्रिक तनी गो पेई कैसे बोलब जा लाफ्रिक पो पेई लाफ्रिक पो होवन जा त उ लोग के हाईवे के पैसा नहीं बट तो लोग कौन सी करियन जा देखा अब एगो तोरा बोल दे वो चीज और पारंतेज है देखा एगो पेई में जनबा ओकर खाए के नहीं मिला था तो ओके बोलबा देखा जस्ती गांची प्लांटे कर ओके बोलबा शॉबों ने से भी करके तो ओके चला शॉबों में से भी कर लकड़ी जरा के तब ओके पड़ी खाए के पकाए के तो यहाँ पर मॉरिशस सामने के कैसे बोलब जा
1: लकी है जहाँ
0: हमने के तो गैस बा ना गैस से हमने जरावत है जा यानी कि तो प्रदूषण नहीं होता जहाँ से कम की प्रदूषण होता नहीं बोला कम प्रदूषण नहीं बा कम की प्रदूषण बा को उपाय कर बा जब लकड़ी जरे बा तब आ जब लकड़ी बा जरावत हुआ तो जो गैस निकला था ये जाके सौम क्लिमाटिक करता तो जना तो ना सजा एगो प्रॉब्लम सोल्व कर बा दूसरा प्रॉब्लम निकाला तो बस समझ लेना तब लाफ्रिक में जाके बोलबे गो पेई में कैसे एक मजा ले फैक्ट मजे गो इगो पेई अब हम एटी सुजे सीमे ने करते हैं फॉर एग्जांपल इगो पेई फॉर एग्जांपल लेवा सूडान इगो पेई दे बा लाफ्रिक के सूडान वहां पर जाके बोलबा देखा सेवी गैस पास सेवी जी बा तब पौधे का पैसा रही कि नहीं कि गैस तब ना और का जी गैस बाव करला कि नहीं बा और देखा है जा फिर जितना जब ची हमने तो सब चीज आए पोते करते हैं जाना थे जा तो हाई प्रॉब्लम जो होता
1: हावे
0: हावे
1: तब इतना महंगा हो जाए बा अब तब बोले जब गाज नहीं सेवी करके अब तब जुप्पा से अधिक चुके अब तब यहाँ वहाँ कहाँ
0: नहीं तो ये कुछ समस्या ये कुछ समस्या हो जाए बो तो हाई एंको ते निकाली सा तो रोतमा पर बचा तलब तब हमने की तब सरकार बोला नहीं चला जा पर उसकी हाई हमने की बहुत अफेक्ट करता तो हमने की जब जितना हमने प्लास्टिक सेवी करते हैं जा प्लास्टिक जितना सेवी करते हैं जा इस एकर से देजा हानिकारक होता और क्योंकि हमने को टापू है सा तो दूसरों बगल के जो जो कोरा करकट बा बहा के भी मॉरिशस के आवता ओकर लागों में आवता लागों में आवता मैम ओकर हाईसी में बा हुआ पर भी आवता तो इस सब के गो समस्या हमने बोली जा इस समस्या के जाने को हल ढूंढे के तो हये खातिर हम दे पानी को रोड मैप बने जा
1: तो इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम जारी रखेंगे फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और हमारे श्रोताओं और दर्शकों से भी मांग करते हैं अगर आपके पास कोई सवाल हो या फिर आप कोई विचार आपके राय हम लोग जानना चाहेंगे 4028085 पर वैसे आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या आपने कभी प्लास्टिक कम करने की कोशिश की ये भी हम जानना चाहेंगे तो बेशक अभी फैजान से गुजारिश है कि एक गाना अभी के लिए चलाएं। आज की

कल्चर स्टूडियो में उपस्थित हैं पर्यावरण मंत्रालय से डॉक्टर राजेंद्र कुमार फुलमान जी और श्री किरण कुमार बलक जी। और जैसे कि हमने बोल लीजा, आज हमने जो सरकार

0: द्वारा जो मतलब एक रिकमेंडेशन कर ले बाकी कुछ चाइना करे के प्लास्टिक घटाएगी तो बलक जी जुन जुन कदम पिछला प्रोग्राम में हमने चर्चा कर ली जा एक पर जस्ती खुलासा दिए
1: जाता अच्छा सा ये रुद्मा पर्यावरण मंत्रालय और सब स्टेक होल्डर की सहायत से तैयार कर रहे बा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्राइवेट सेक्टर रहल NGOs यूनिवर्सिटीज और अनेक अनेक मंत्रालय के कोलाबोरेशन से यानी कि मिलजुल के ये तैयार कर रहे बा काहे ऐप उतर रहल कि सब स्टेक होल्डर के इन्वॉल्व करके क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए सब इंस्टीट्यूशन के एक रोल ऐप होता बा सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ सरकार
0: नहीं
1: सकी तो प्राइवेट सेक्टर NGO सबके ऐप होता
0: सबके राय ले लेके तब एक सिचुएशन में
1: एग्जैक्ट हाँ तो और ये रोड मैप एक जैसे बोला 10 years प्लान है
0: अच्छा
1: 10 वर्ष के प्लान है और उसमें 11 लक्ष्य यानी कि 11 टारगेट बा और अप्रैल 60 गतिविधि यानी कि 7 एक्टिविटी बा एक्टिविटी और 7 एक्टिविटी जैसे डॉक्टर सुलमान जी बोलक कि समय समय पर एक्टिविटी इम्प्लीमेंट कर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटी बा एक या दो वर्ष में लागू हुई से बोला शॉर्ट टर्म मेजर्स कोई एक्टिविटी बा 3 से 5 साल तक लागू जैसे बोले लागू हुई मीडियम टर्म मेजर्स और कोनो बार लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल तक फॉर एग्जाम्पल एगो प्रीमियर एक्टिविटी है यानी कि प्रीमियर एक्टिविटी है कि एगो डेटाबेस डेवलप कर अब सर अभी के लिए अभी डेटाबेस नहीं बा फॉर एग्जाम्पल आप से पूछ बता कि मॉरिशस में एक साल में कितना प्लास्टिक एपोते कर कितना बोल प्लास्टिक या कब प्लास्टिक एपोते कर तो बोल सर शिफाने बा तो बोलब कि काम करेगा शिफा नहीं जाने ला तो इसलिए एपोता है एगो डेटाबेस पोमियम एगो डेटाबेस डेवलप करे के और इस डेटाबेस से हमने जानब सर कितना प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस में आवेला कितना प्लास्टिक मॉरिशस में बनावेला सर कौन कौन प्रोजी प्लास्टिक में आवेला और कौन कौन डिफरेंट टिप दे प्लास्टिक भी आवेला क्योंकि सब प्लास्टिक रिसिकले हुई कोनो प्लास्टिक सकला रिसिकले हुई कोनो नहीं सकला तो एक डिसीजन लेवा था कि अब 50% रिसिकलाज कर अपना मॉरिशस में तो एक बात इन्होंने चाहेला जाने सर कितना वॉल्यूम प्लास्टिक आवेला तो ये सब एपोता है और गवर्नमेंट भी एक कोनो भी डिसीजन ले कोनो भी पॉलिसी मेजर लेवा सर तो एक बात देने को स्टैटिस्टिक चाहेला तो स्टैटिस्टिक नहीं बा तो इसीलिए पहला कदम है कि एक बात देने चाहे
0: काम सब करे
1: अब दूसरा एक्टिविटी है कि एक नुवो लालवा प्लास्टिक पर इंट्रोड्यूस कर नाम है प्लास्टिक गवर्नेंस एंड कंट्रोल एक्ट कहे कि क्योंकि अभी देखब तो प्लास्टिक डिफरेंट ऑथोरिटी के डिफरेंट रोल बा प्लास्टिक पोल्यूशन के कंट्रोले प्लास्टिक के समस्या के प्लास्टिक के एपोटेशन से डिफरेंट रोल बा ओके फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण मंत्रालय के हमने के दुगो रेगुलेशन बा एगो बा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट रेगुलेशन और दूसरा बा प्लास्टिक बैग जो प्लास्टिक प्लास्टिक जैसे बोला कि एपोटेशन के कंट्रोल के बान और कंट्रोल कर ला सर और दूसरा सिंगल यूज आई थिंक एक ही सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई है फू से कप टेके हुए इसे आपके कंट्रोल कर देगा और दूसरा एग्जाम्पल नहीं बता एगो लालवा बा वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिकवरी एक्ट वो कौन सी करेगा फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक जब एगो वेस्ट हो जाए उसे कंट्रोल करे ला वे से कहाँ पे जाए क्या सब पेमी देवे ला पेमी कर्कस के ट्रांसपोर्ट करे देवे ला फॉर एग्जाम्पल एगो कंपनी एगो कंपनी वो प्लास्टिक के रिसिकले करी तो इस ला लॉ में इस जैसे बोल लिया वेस्ट मैनेजमेंट रिकवरी एक्ट से कंट्रोल करे ला और फॉर एग्जाम्पल सब प्लास्टिक के एपोटेशन तो MOA करे ला MOA कंट्रोल करे ला तो देख ला तो प्लास्टिक के

0: que Sangat, différents, différents. Institution mais comment dire contre les carrés là donc ici lié et que ça combine quelque et que la loi blanche soit soit plastique qui ici hoy soit plastique ou la loi mais c'est qu'on contre les carrés ça or et que tissa activité qui a ce qu'un nom ce que vous avez cette phase wide reduction of plastic packaging consumption by 2035. अभी जय बाद
1: एको 2026 है इसे
0: बाय
1: द 2035
0: तक हाँ क्या है द अगर अभी जय बाद को जाते हो बुटीक में जय बाद सुपरमार्केट में जय बाद एको प्रोड्यूस किल बाद एको प्रोड्यूस तब देख पाता बहुत प्रोड्यूस मैं ओवर पैकेजिंग हा एक एग्जांपल वाब एको बिस्कुट द खरीद बाद एको बिस्कुट देख लो तो एको प्लास्टिक के प्लास्टिक पैकेजिंग हा अब उसे खोल बाद अंदर भी देखो तो पीटी पीटी पैकेजिंग और बा इसे ओवर पैकेजिंग
1: बोला जाला
0: तो इसे लैपू तो ना एक देखा एक प्लास्टिक में बा और दूसरे भी और प्लास्टिक बा तो इसके एपू तो रहा इतना प्लास्टिक क्योंकि ओवर पैकेजिंग हो तो इसके क्या रिजल्ट है तो बहुत पैकेज बहुत पोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन के इंक्रीज
1: हमने के अच्छा लगे आई छोटा छोटा पैकेट का है कि एक को लेकर के कब लेका के देवेला एक को प्लास्टिक में ऐसे सोच ले हां
0: ऐसे सुन रहा बस जैसे भाजी बोल लग तो एक बैलेंस ऐसा करे के को ले पा कौन चीज है बाद में खा ले तो बिक दे तो ले पा कौन चीज है जैसे एग्जांपल बोल ला कि लेका के तो का दूसरा ऑप्शन बा लगा बिस्किट वाला लेके एक कंटेनर द लॉन्ग लास्टिंग बा में डाल दी बा तो शान के फिर से धो दे बा ये सोल्यूशन बा तो अभी फैसिलिटी देखे ला अभी फैसिलिटी तो खोल के पैगा के डायरेक्टली दे दे बा तो हाँ फैसिलिटी हाँ मतलब क्योंकि जैसे भाई जी बोल लग प्लास्टिक जब इन्वेंटे हुल तो अभी बोल रहा है कि भगवान के रूप लेके वो आदमी प्लास्टिक क्योंकि के अमाउंट कर ला पर कि बहुत
1: सुविधा मिला
0: लेकिन तो लैपाक दिन ब दिन लैपाक लैपाक और प्लास्टिक कौन प्रॉब्लम है कौन समस्या से मेन समस्या है कि हमने अब्यूसिव यूज कर लिया सर ये प्रॉब्लम है याद बा जब मैं छोटा था एक मेरे दादी लोग पर दादी तो क्या करते थे वो प्लास्टिक जब यूज करते हो सर तो उसे धो के सूखे के डाल रखा तो अभी के जनरेशन कर रही है इसे एक ही यूज करके बिग दे बा तो इसलिए अक्यूमिले तो ऐसे तो देख पा सब प्रोड्यूस में पैकेजिंग ओवर पैकेजिंग आवता ओके तो हमने एक कमिटी सेटअप कर मिनिस्ट्री में जहाँ पे एक डिजाइन पर काम कर डिजाइन पैकेजिंग के डिजाइन पर या तो फॉर एग्जाम्पल लिटिल बहुत कम पैकेजिंग के
2: इस्तेमाल
0: कर या तो पैकेजिंग कर तो वो जैसे है प्लास्टिक जो जो रिसिकले से क्या हो क्योंकि सब प्लास्टिक से नहीं सकता रिसिकले तो पैकेजिंग कर तो ऐसे तो वो पैकेजिंग जो सकता रिसिकले हो इसके इस्तेमाल कर सकता कर
2: हम तरीको आजूटी कर दी देखा ताले वा बोला हमने कि 2035 लेक मजे लेटों के लिए हैं जहाँ हाँ। तो देखा ताले कैसे इनके भाई बालक बोलन एगो कमिटी एटाब्ली करब जा था कमिटी वा में सिर्फ मंत्रालय को नहीं रखना था जिस खाली सेक्टर गवर्नमेंट नहीं रही बस इकर में इम्पोर्टेंट भी अन्य तालब से सब कोई के जितना कोई मजे कॉन्सियने बाहर से लुके वो कमिटी कर रहा था बस कि क्या है हमारी बोली से देखा हमारा लक्ष्य बा कि हम के चला 2035 में हमने की जो पैकेजिंग बा चाइना को माजिया कमती कर देके तब जब बोले हम कमती करब तो कैसे कमती करब तो एक हम इम्पोर्टेंट है कि हम बोल दिए अब देखा काल से हाई तेल प्रोजुआ नहीं चला आने के तो वो एक कौन सी सकी करी स्वाइगो जिस जो लीजिंग जो लोग प्रोजुए कर सौ पैकेजिंग बा ओके बोल दिए अब काल से आगे तो जितना कम करो बा कौन सी करी जितना कमान बा ओके कौन सी करी तो ये खातिन हमने बोला सा कमिटी वा क्रिए कर जिसमें सकेंड के और पॉइंट ऑफ व्यू लेके तब भाई बोला सा बहुत देखा हमने अला ऐसे कर पहला हैला ऐसे कर दीजिए हम तब भाई करब सा जिसमें सब कोई की मजे लेके जिसमें कोई अफेक्टिव नहीं हुई अब अफेक्टिव या सुफेक्टिव हुई जा मैं को मजे पर्यावरण के दिमाग में रखते हुए कैसे कौन कदम करब जा कि जिमे सकियन जाक मध्य जिसका बैंक थोड़ा
1: थोड़ा समाधान चाहे निकाले
2: के तरफ बॉक्स ऑफिस गुस्सा देखा काले हम जंबो अब एगो एगो एगो एगो मॉल गए नहीं है शॉपिंग मॉल देख बा अब कौन सी दिखा दी से हाउ बनान आगे दिया सब कोई बनाना ऐसे बेचता है ना तब बनाना दिखा तो कर में एगो एगो ट्रे डले वन सा ओकर पर बनान रख के तब ओकर में एक एम्बलास प्लास्टिक डले वन से स्किन से से रहा लाइदा परफॉर्म नहीं किया बो कुछ एस्थेटिक अच्छा बा मैं इसकी नहीं से से रहा लाइदा तो हमने की चाहना आप सोची कि वाला कि देखा आज हमने खोज आप शायद जिमनी करके पाकि चिंग तो भाई सब मजे चाहना ग्रेजुअल में एलिमिने करे के खातिन धाइले बोलब सा हां भाईला जुई लगाया दिखे गया हां इसके लिए चीनी से पूछी कुछ कर
1: और हम के याद बा एगो शॉपिंग मॉल के पार्किंग में पुराना टोटल इलेक्ट्रोमेनाजे टेलीविजन कंप्यूटर के लेखन जमा करके एक रिसाइक्लेज कर जाला और सब मजे शॉपिंग मॉल वा में अलग अलग चीज जैसे बोतल चाहे रखे के है में है तो ये ऐसे अच्छा बात है
2: एकर कैसे गलत अनुसे करनी जा कि सरकार काम करता कि हमने के तीन गो डिफरेंट कोरादान बोले सब हाँ, बल्कि डिफरेंट हाँ. कोरादान डेवलप से तीन गो हैं एक गोवा में जो जितना कम जो देशी बीयू देखा था आप कैसे बन सके कैसे लेगीम के छल का तो लाकू में जितना कम जो वे जितना कम जो लेती है जो सकी सरी कम जो सरी लंसा है ला एक गो जाए दिशम में जितना चीज से कि रिसाइकले हुई हावला में जाए फॉर एग्जांपल देखा पापिय से कि रिसाइकले हुई मेटल बा ऊ रिसाइकले हुई कैसे प्लास्टिक बा ऊ से कि रिसाइकले हुई सब उद्देश्यम कूड़ादान में जाए और थर्डम कूड़ादान में जो नहीं सक बा प्रथम कूड़ादान दशम कूड़ादान में नहीं जाए तो थर्डम में जाए तब भाई जब ऐसा सुविधा जब करब जा तब प्लीज अभाव जितना हाउ जितना बीयू डिग्रेडेबल यानी कि हाउ छल का लुक सब ओके जाके विदा कर आपसे कंपोस्ट करी बनाई कंपोस्ट बनाओ आपसे ओकर से हैला पहला अब हाउ जो डीजेम पुबेलो आबा ओकर में से निकाल के एगो सॉन्ट ओके बोला से एगो सॉन्ट दो ट्रियाज में जाए जहाँ पर ओके ट्रिए कर अब जा वो हैला प्लास्टिक है ओके प्लास्टिक निकाल दियो आपसे हैला मेटल बा है मेटल निकाल दियो अब जा और हैला
1: और मेटल वा से सुने रहन जा कि वो लोग कुर्सी मेज दरवाजा ये सब बनावे जब रिसाइकल
2: तब भाई से को के सेपारे कर दे बा तब रिसाइकल जोन बा देखा मजे आप कैसे रिसाइकल बा प्लास्टिक वा के प्लास्टिक वा के रिसाइकल वा वा के लेके अपन लीजिन जाए यानी के समझे देखो सब जब एक एक्शन को जिनी बा को मजे कर में तब ऐसे तो तलेवा भाई बोलता हमने की चाहे को बास दे दोनी अभी बास दे दोनी नहीं बा जब बास दे दोनी को मजे सकल बनाए लगब चाहे सब मजे रमास के हो मिल जाए हमने के दुनिया तब से कब से जाने बहुत देखा हमने के इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता इतना प्लास्टिक बा एक चाहना रिसाइकले करके अब रिसाइकले के खातिन चाहना अब फेक मजे दुलबा एक ही गोलीजिन बा एक ही गोलीजिन नहीं सके इतना सब प्लास्टिक रिसाइकले करी तब कौन सी कर अब जा ते गो इंसेंटिव दे अब जा जिमें कि दिजम त्रोजियम लीजिन सकी बने समझ लेना तो एक ही बोला सा कैपेसिटी बिल्डिंग है ईगो एगो पॉमी बा तो ऐसे समझ ले ऐसे गति गति को मजे कर ले जा आप सब अब एगो दूसरा चीज बा मजे देखा अब हम नहीं बोलब जा अब पहले हम बच्चे नहीं चला ग्रेजुअलमेंट एक एक कुछ नहीं ग्रेजुअलमेंट हमने जिमिनी करे लगा जा जो प्लास्टिक ओकर इस्तेमाल करे खातिन फॉर एग्जाम्पल देखा एगो सैम्पल एग्जाम्पल दे होते हैं हमने के जो सैक प्लास्टिक जो बा एक बोला सर जब अभी तो रेम्प्लेस कर दिन सर सैक प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल से बायोडिग्रेडेबल से तो आप देखा थे जब बायोडिग्रेडेबल में हाई में भी देखा थे जब अब आगे जब कर नहीं सर तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहा अब जब देखा थे जब रिसर्च भी होता तो देखा थे जब मैम हाउ बायोडिग्रेडेबल में एक भी हानिकारक बा कोनो चीज बस कि तलवा कैसे भाई बोलन हाई बायोडिग्रेडेबल जो बा उकर में सिर्फ खाली बायोडिग्रेडेबल डलबा तो वो प्लास्टिक वाने से चीनी करे तो एक में चला एडिटिव्स डाले के जब एडिटिव्स डाला तक मजे सकवा जब पकड़ बज में चला सो देखे को रुचि तो फट जाए समझ ला ना तो खाली मजे बायोडिग्रेडेबल से कौन सी बोलन सर एक कोनो फौजी माई से भी कर लन सर माई मकई मकई कोनो प्रोड्यूक मजे कसाबा कैसे बोल सा वियोलेट वियोलेट स्वाइटी सेबी के लंच हाँ ओकर थी हाँ सेबी के लंच उबिया कोनो सेकेंड चक मजे स्टार्च स्टार्च जोन सेबी के लंच कैसे बा हमने की पुम दिया

0: Or my pas touch, how sub c'est vu que c'est que la sac bio de cada banai. Ta si kali how la 100% c'est vu carbat, ta sa quoi n'est ni kari. Ça m'a donné parce que au corps mec, que c'est bon ça strength au corps n'est ce qui tini kari go pas d'albat. Tu même ce qui pas tini kari et quand même deux certit mélangé
1: voilà.
0: Ab jab ab research hota, ta lega hamni ki jane ab jan me al ki how jo additives jo dala twan sa. Isa ki hani karak kari.
1: Ah.
0: Si kar me thoro produit chimique ba jono ki sakik ma jao ke chini karai. Ab hai bi samadla na hai bi go samasya kar le
1: ho. Ego dusar option
0: jae ego. Ha option. Samadla na. Ta bi go option ab chala ma ja ab. Akus base de duniya utna ne ba. Ta aj base de duniya se create ho jae hamne ke. Ta se kab se jane dekha. How jon plastic ba okar l'épaisseur se kab sa augmenter kar de. Ego l'exemple de hote ni bote ki hai jab sa kar
1: le. Ha ne ego.
0: Ego l'exemple ha. सबक वाले पैसे ओमांते करते पैसे कैसे मुझे दूसरे जन पे में होता ओकर ले पैसे ओमांते करते बा तो हाउ सक प्लास्टिक वा से जन प्लास में इके कुछ सेविंग करके बिग दे बा तो के दे थ्रो कुछ सक बस सेविंग करे समझ लेना तब एक वो एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल दे बोलते कैसे कोनो बोल बा Tupperware, par exemple, il y a Tupperware ou durable, hein, ou c'est. T'as ok, encore mes cailles qui d'alba, ok, tu as observé que les bateaux qui d'eau qui est ça, bah, puis c'est ça. Et qui voulait ça, reuse. T'as mis qui goût douceur roadmap, j'en voulais ça, ok, voulait ça, économie séculière. Économie séculière, compte, y a, y a ni que tu t'as tu produis, carré toi, ok, ça, bah, fils, c'est istemal, carré. Ça m'a de là, non. Abdika, par exemple, égo simple exemple de what time, que c'est. अब थामो लगे गो बिसिक्लेट बा हम बिसिक्लेट वाने से भी करत हैं ओकर में गो ची फ्रेंस पा गो पेडल टूट गल बा हम बोली ए
1: थैंक यू
0: ओके वीडियो पर त नहीं एक मजे एगो सका बे गो प्लेटफार्म क्रिएट कर एक मजे ऑनलाइन अब दे सब कोई पोर्टल से भी कहता सब कोई ऑनलाइन बा देखा मामो ने पी बिसिक्लेट से की के नॉ वी प्रो ओ बोली ए मो विन प्रो ली हाउ कवरा लेली उ लेके त कोन ची को बना के फिर से भी करी यानी के देखा है जोन जात है ला हमने की जोन मार्शी को जात मजे पिगा तो वहां पर ते गु दूसरा जना से भी करता देखा
1: पगजो कोनो कोनो हवे बाइसिकल वा लेके एक दूसर चीज बनाए को घर में डाले न सर को दूसर फासों बना के
0: मैं मी को डेकोरेशन
1: को डेकोरेशन के रूप में स्टैंड ही सब
0: इकोनॉमिक मजे इकोनॉमी से एक्विलियर सब जी हमने की जोन प्लास्टिक जोन रोड मैप बा ओ en étroite collaboration comme que tu as fait économie circulaire katin te talewa bhai ji brotne ko zafi ki hamne ke utna information nahi ba ab hamne ke chana analyze kare ke jo jitna plastic jo na mourisme helata kon plastic sagba ko majhe okar me se recycle kare aur kon plastic nahi sakla recycle hoi
1: ta ekar par kaam hoi ta kaise ab athi janta ke janai ba is sab cheez kaise ulo ke jaat ha
0: ta hai ego dusra hamne ke kadam ba ekar me ba sensibilisation ego volet tres important sensibilisation yani ki hamne ke plusieurs medium servi karab ja même la gazette même dikha kaise aaj pachate ja mbc mein même ce qui ban short video ko majhe banab ja tab जब मुझे ओके टेलीविजन में डालब जा ओके फेसबुक पर डालब जा और जितना मुझे कैसे सोशल मीडिया बा इंस्टाग्राम
1: फुलमन आपके देखे मैं कैसे ने को एक विषय स्कूल में ने सकेला शुरू करे के एक वजह वो लोग छोटा से प्रीमियर से वो लोग के जनाए के तब ये आगे चल करके जैसे 2035 ले सक अब से को
0: इसे बोला हमारे मुंह के बात छीन ले यानी कि हाई सब प्रोग्राम में बा ऐसा प्रोग्राम है बा यानी कि कली करिकुलम ओके एटी करब जा चेंजे करब सिर्फ खाली लाइक लोग के नहीं मजे कैसे प्रीमियर के नहीं मेन प्री प्रीमियर से शुरू करब जा क्योंकि प्री प्रीमियर से शुरू होला सब चीज ला बिजिट और देखा प्री प्रीमियर आई प्रीमियर तब आई सेकेंडरी मेन टर्शियर और हाउ जोन वीडियो भी बना जा एक एक मजे कैसे मेन parents loqué comment dire loqué bi jana conscientiser que le Québec de Grammy par exemple a dit mentalement mais ne kam kai tam ne jenti plastique kon problème ba ça me tlan ta hai sab ke chalak mache ego ko ko ni chal chode ke sab ko ke chalak mache sab niveau ke
1: chal no le twa cha hai dusar dusar sange but hai ke
0: are ko saral bhasha mein chalak mache jime ki sab ko samji par jab hum thorap se bolab dekha hum bolab c'est différents types plastique ba polymère à peu près ça PUT bas PVC bas PS bas
1: हम लोग ने समझ में नहीं आई कौन सी बोल
0: तो हाँ खाली हम भाई और भाई जी समझ अब सा समझ लेना तो एक हथनी में एक लॉन्ग आज में कुमार जी हाई सब हाई बा हाई ला में और देखा था समय को बहुत कम थी
1: बहुत कम थी बा
0: तो एको एको दिन ये बोल देवो था कि रिसर्च भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट तालो हम थोड़ा बोलो था कि हमने के चाला रिप्लेसिंग करके प्लास्टिक तो कौन सी से रिप्लेसिंग करें एको प्लास्टिक निकाल के दूसरा प्लास्टिक इनसे नहीं रिप्लेस करें तो एकर पर चाला एकर अल्टरनेटिव बोला जो अल्टरनेटिव पर चाला रिप्लेसिंग करके तो अल्टरनेटिव आज बड़ा सियानब तो जिस टाइम के मंगा कुटी हुई तो कहे नहीं हमने अल्टरनेटिव मोरिस में निकाला अब यानी कि जितना हमने कि देखा फॉर एग्जाम्पल रिसर्च होता है यूनिवर्सिटी मोरिस में बनान के जो छिलका बा ओकर से सकबा हो कप बनाई कप इस्तेमाल करबा चाय भी सकबा को मैं पिए या कि कप इस्तेमाल करके तो के सकबा बिक दे जब बिक दे बा तो कंपोस्ट बन जाए समझ लेना तो ऐसा नहीं कि जाना बहुत रिसर्च करके तो एक कहते नहीं एगो दूसरा लॉफाज एगो बन एक्शन हो जाना जो प्रमोट करके रिसर्च एंड
1: बहुत बढ़िया चीज तो समय उतना नहीं रह गया है लेकिन आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे इन सारी जानकारियों के लिए और साथ में जितने श्रोता और दर्शकों ने हम लोगों को सुना ध्यान से जो संदेश जो मैसेज हम लोगों की ओर से उन लोगों तक पहुँचना शायद उन लोगों को मिल गया होगा तो फैजन रितेश और उरुसा को धन्यवाद देते हुए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फुरमान जी और डॉक्टर श्री बलक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे नमस्कार और आदाब।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music.
3: 4 p.m. संक्षिप्त समाचार आपके साथ पूजा, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीषमा, सभी को मेरा नमस्कार। ठेकेदार महिलाओं के समर्थन और लिंग समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच नई उप प्रधानमंत्री आर्यन अवा मारी ने आज दो प्रतीकात्मक औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2026 में और फिर जेंडर पर आधारित सातवें हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग में, जिसमें यूरोपीय संघ के साझेदारी के साथ जिसे यूरोपीय संघ के साझेदारी के साथ आयोजित किया गया। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेजबानी की तैयारी में है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशक, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अफ्रीकी नेता और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मॉरिशस और अमरीका के कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका के सीईओ ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कई आर्थिक प्रतिनिधियों से भेंट की। मॉरिशस के हरे भरे दृश्यों के बीच नई पीढ़ी के गाइड्स मॉरिशस आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रामाणिकता और रोमांच पर ध्यान दे रहे हैं। इन टूरिस्ट गाइड्स में ओलिविया और एरिक शामिल हैं, जिन्होंने 9 महीने पहले एक्टिविटीज मॉरिशस की स्थापना की है। विदेश में ओशन वाइड एक्सपेडिशंस ऑपरेटर ने कहा है कि दो लोग जोहान्टा वायरस क्रूज जहाज से गंभीर में

0: गंभीर हालत में निकाले गए थे। इलाज के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ऑपरेटर ने बताया कि तीसरे यात्री जो स्थिर हालत में है एक उड़ान में था जो देर से रवाना हुई है। और उधर वियतनाम और थाईलैंड में टेलीवर्क को बढ़ावा देने से लेकर फिलीपींस में घोषित ऊर्जा आपातकाल तक दक्षिण पूर्व एशिया की सरकारें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधानों से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुक्रिया।
1: से मिले दिल।

0: नमस्ते आदाब, हेलो सभी को, मैं हूँ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3। दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना रहा हो, शाम का ये वक्त दिल को थोड़ा सा सुकून दे ही जाता है और अगर साथ में हो अच्छे अच्छे गाने तो मूड अपने आप अच्छे लगने लगता है। तो चलिए आज की इस खूबसूरत शाम में थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और प्यार के एहसास को महसूस करते हैं। आप इंजॉय कीजिए आपके प्यारे से गाने।
1: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio. Radio.
1: प्यार में जीना, प्यार में मरना, कसम प्यार की होती है। जान का क्या गम, जान से बढ़कर

दोस्तों 4:26 हो चुके हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग आई केयर नहीं कहते, बस हर बात यही पूछते रहते हैं कि खाना खाया या फिर खाना के लिए क्या बना रहे हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए, जो आपकी केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उन्हीं का बहुत ख्याल रखते होंगे, जिनके साथ आप बहुत जुड़े होते हैं उन्हीं का ही ख्याल रहता है। तो बस इंजॉय कीजिए ये गाने आप सबके लिए।

0: दोस्तों 4:32 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम दिल से मिले दिल तक, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके साथ आपने ज़िंदगी जीनी होती है, जिनके साथ ज़िंदगी काटनी होती है। कहते हैं ना कि जो काटने वाली बात होती है ना, ये थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। तो आप अपने रिश्तों को बहुत ही सुंदर और मधुर बना सकते हैं और उनका ख्याल भी रख सकते हैं, जैसे कि जब आपके साथ ये गाने जुड़ते हैं, उनकी याद जब आती है, जब आप उनको मिस कर रहे होते हैं, तो आपका एहसास होता है कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। तो बस आप अपने प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, मैं हूँ आपके साथ पूनम, इन्जॉय कीजिए। और अगर खाना बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिस समय आपको पीसफुल भी हैं और काम भी कर रहे हैं, तो बस इन्जॉय करते रहिए। कुछ भी ज़िंदगी में कभी भी अच्छा सा प्यारा सा हो सकता है। ये है गाना आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों 90s के गाने ना सच में बहुत ही खास होते थे। शायद प्यार करना भी लोगों ने उसी दौर में सीखा। उस समय लोग जो ना किसी से कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते थे कि अरे भैया इसको बोले या ना बोले, कैसे मानेंगी नहीं मानेंगी। पर 90s के सिंगर्स ने दिल की बातें आसान कर दी, उन्होंने गानों में कह ही दिया, हम तुम्हें याद करते हैं। और सच में जो उन्होंने कहा ना वो हमने सीखा भी।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों 4:46 हो चुके हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे 90s के गानों की। जब देखिए 50s चला गया, 60s चला गया, 70s और 80s के बाद जब बात आई 90s की, तो एक ऐसे सिंगर्स आए हमारे बीच में जैसे कुमार सानू हो गए, अभिजीत, कविता, कृष्णमूर्ति, उदित नारायण या अनुराधा पौडवाल। इन सभी कलाकारों ने ऐसे गीत गाए जो शायद एवरग्रीन हमेशा के लिए हो गए। इनके आवाज़ में एक ऐसा अलग एहसास था और आज भी शायद इसीलिए हम इन गानों को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में इतने तरीके से एहसास कर पाते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये जो 90s के गाने ना हमेशा दिल के पास रहते हैं।
1: RM3 रेडियो।

0: दोस्तों इसी के साथ आज की एक खूबसूरत शाम यहीं तक। उम्मीद है 90s के इन प्यारे गानों ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपने खास लोगों के करीब रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे RM3 पर। नमस्कार आदाब, इंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग बाय दिलेर मेहंदी।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: जानातु संस्कृतम्, संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम में पुनः एक बार कीर्ति और सुरभि की ओर से आप सभी श्रोताओं को हृदय तल से अभिनंदन। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और शनैः शनैः संस्कृत को सीखिए। आइए इस सत्र का प्रारंभ हमेशा की भांति प्रार्थना से करें।
2: ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: मस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति।
1: श्रोताओ, पिछले एपिसोड्स में हमने सह सा अहम और त्वम के साथ क्रियाओं को देखा जो एक वचन के रूप हैं। आज हम एक वचन के साथ बहुवचन में भी क्रियाओं के रूप देखेंगे, तो ध्यान से सुनिए और हमारे बाद दोहराइए। सह गच्छति,
2: सह गच्छति।
1: वह जाता है, वह जा रहा है। ते गच्छन्ति,
2: ते गच्छन्ति।
1: वे जाते हैं या वे जा रहे हैं। यहाँ ते का अर्थ है वे सब, पुल्लिंग में। आप सह और ते के स्थान पर किसी भी पुल्लिंग संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में कर सकते हैं, जैसे बालकः गच्छति,
2: बालकः गच्छति।
1: एक बालक जाता है या जा रहा है। बालकाः गच्छन्ति,
2: बालकाः गच्छन्ति।
1: अनेक बालक जाते हैं या जा रहे हैं। इसी तरह
2: अध्यापकः गच्छति, अध्यापकाः गच्छन्ति। भरतः गच्छति, भरताः गच्छन्ति। युवकः गच्छति, युवकाः गच्छन्ति।
1: अब आगे बढ़ते हैं। सा गच्छति,
2: सा गच्छति। वह जाती है या वह जा रही है।
1: ताः गच्छन्ति,
2: ताः गच्छन्ति। वे सब जाती हैं या वे सब जा रही हैं।
1: यहाँ पर ताह सर्वनाम का अर्थ है वे सब, लेकिन स्त्रीलिंग में। अतः सा और ताह इन दोनों सर्वनामों के स्थान पर आप किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा का प्रयोग करके एक वचन और बहुवचन में क्रियाओं के रूप को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए बालिका गच्छति,
2: बालिका गच्छति।
1: एक बालिका यानी छोटी कन्या जाती है या जा रही है। बालिकाः गच्छन्ति,
2: बालिकाः गच्छन्ति।
1: अनेक बालिकाएं जाती हैं या जा रही हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं
2: अध्यापिका गच्छति, अध्यापिकाः गच्छन्ति। लता गच्छति, लताः गच्छन्ति। सेविका गच्छति, सेविकाः गच्छन्ति। इत्यादि।
1: क्रियाओं की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। त्वं गच्छसि,

0: श्रोताओं, आइए अब हम संस्कृत में एक लघु कथा का आनंद उठाते हैं। कहानी का शीर्षक है वंचकः बकः अर्थात धूर्त बगुला। कुत्रचित् अरण्य प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। किसी एक जंगल में एक सरोवर था।
1: तत्र बहवः जलचराः आसन्। वहां अनेक जलचर रहते थे।
0: कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। कोई एक बगुला भी वहां लंबे समय से रहता था।
1: कालांतरे सः बकः वृद्धः अभवत्। समय के साथ वह बगुला बूढ़ा हो गया।
0: अतः सः मत्स्यान् ग्रहितुम् असमर्थः अभवत्। इसलिए वह मछलियों को पकड़ने में असमर्थ हो गया।
1: इदानीं

0: असमर्थ हो गया।
1: इदानीं
0: क्षणाय एकम उपायम अकरोत्। बगुले ने अपने जीवन की रक्षा के लिए एक उपाय किया।
1: उपायानुसारं सः सरोवरस्य तीरे उपविश्य रोदनम् आरब्धवान्। उपाय के अनुसार वह सरोवर के किनारे बैठकर रोने लगा।
0: तदा एकः कर्कटकः बकम् अपश्यत्। तभी एक केकड़े ने बगुले को देखा।
1: सः बकस्य समीपम् आगत्य अपृच्छत्, भो बक, भवान किमर्थम रोदनम करोति? बगुले के पास आकर उसने पूछा, हे बगुला, आप क्यों रो रहे हैं?
0: बकह उक्तवान, इतः परम द्वादश वर्ष पर्यन्तम् अत्र वृष्टि ही न भविष्यति इति अहम् दैवज्ञस्य मुखात् श्रुतवान्। बगुले ने कहा, मैंने किसी भविष्यकर्ता अर्थात ज्योतिषी के मुख से यह सुना है कि अगले 12 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी।
1: अस्माकं सरोवरे किंचित एव जलम अस्ति, हमारे सरोवर में बहुत कम पानी है।
0: शीघ्रम एव तदपि शुष्कं भविष्यति, जल्द ही वह भी सूख जाएगा।
1: मम मित्राणि, तदा भवन्तः सर्वे अपि मृताः भविष्यन्ति, अतएव अहम् रोदनं करोमि। मेरे मित्रों, तब आप सब भी मर जाएंगे, इसीलिए मैं रो रहा हूँ।
0: एतत् श्रुत्वा कर्कटकः मत्स्याः च भीताः आसन। यह सुनकर केकरा और मछलियाँ सभी भयभीत हो गए।
1: कर्कटकः विनयेन बकम् अपृच्छत्, इदानीं किं कुर्मः? केकरे ने विनम्रतापूर्वक बगुले से पूछा, अब हम क्या करें?
0: तदा बकः उक्तवान्, अस्य सरोवरस्य नाति दूरे एकः अन्यः सरोवरः अस्ति, तत्र प्रभूतं जलम् अस्ति। तब बगुले ने कहा, इस सरोवर से कुछ ही दूरी पर एक अन्य सरोवर है, जहाँ भरपूर पानी है।
1: तत् कदापि शुष्कं न भविष्यति, तत्र वयं गत्वा जीवामः, वह कभी सूखने वाला नहीं है, हम वहां जाकर जीवित रह सकते हैं।
0: यदि भवन्तः मम पृष्ठम् आरोहन्ति, तर्हि अहम् भवतः सर्वान् तत्र नेष्यामि। यदि आप लोग मेरी पीठ पर चढ़ते हैं, तो मैं आप सभी को वहां ले जा सकता हूँ।
1: ते सर्वे जलचराः उत्साहेन तदपि कर्तुम् आरब्धवन्तः। सभी जलचर उत्साहपूर्वक वहीं करने लगे।
0: ततः आरभ्य प्रतिदिनं सः बकः एकैकं मत्स्यं पृष्ठे आरोप्य तं अन्यं सरोवरं नयन इव अभिनयं करोति।

0: ले जाने का अभिनय करने लगा।
1: किंतु किंचित दूरे एका शिला आसीत, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक चट्टान थी।
0: बकह तान मत्स्यान तत्र स्थापयित्वा संतोषेण अखादत, एवमेव सह बहून जलचरान अखादत। बगुला उन मछलियों को वहां रखकर संतोषपूर्वक खा लेता था। इस प्रकार उसने बहुत से जलचरों को खा लिया।
1: एकस्मिन दिने कर्कटकः बकम उक्तवान् अद्य माम नयतु। एक दिन कैकरे ने बगुले से कहा, आज मुझे ले चलिए।
0: अस्तु अद्य कर्कटकस्य मांसं खादिष्यामि इति चिन्तयित्वा बकः कर्कटकं पृष्ठे आरोपितवान्, शिलां प्रति गतवान् च। ठीक है, आज केकड़े का मांस खाऊंगा। यह सोचकर बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और चट्टान की ओर चल पड़ा।
1: कर्कटकः दूरात एव शिलायां मत्स्यानां पतितानि अस्थीनि दृष्ट्वा बकस्य वंचनं ज्ञातवान्। केकरे ने दूर से ही चट्टान पर मछलियों की परी हुई हड्डियां देखकर बगुले की चालाकी समझ ली।
0: तदा कर्कटकः स्वदंशद्वयेन बकस्य कंठं दृढं गृहीतवान्। तब केकरे ने अपने दोनों दंशों से बगुले की गर्दन को कसकर पकड़ लिया।
1: वेदनया रोदनं कुर्वन् सह वंचकः बकः मृतः। दर्द से कराहते हुए वह धूर्त यानी कपटी बगुला मर गया।
0: इत्थं बकस्य वधं कृत्वा कर्कटकः अन्येषां जलचराणां सुरक्षां अकरोत्। इस प्रकार बगुले को मारकर केकरे ने अन्य जलचरों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना विचार किए आँख मूंद कर विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। सदैव सोच विचार कर तर्क एवं प्रमाण के आधार पर ही किसी भी वचन पर भरोसा करना चाहिए। श्रोताओं, आज का सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। आइए प्रार्थना कर लें।
2: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
3: नमो नमः सर्वेभ्यः। आगामी सप्ताहे

0: All night, right here on your one and only station.
1: इस समय शाम के 5:28 हुए हैं।
2: राम रसधारा, रसधारा।
1: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। रामरस धारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन के नैरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में चार बहनें उपस्थित हैं जिनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। माला जी जय सियाराम।
3: जय सियाराम भाई जी।
1: शिवानी बहन जय सियाराम।
4: जय सियाराम
1: गुरु जी। सिमरन जी जय सियाराम।
5: जय सियाराम गुरु जी।
1: सीता मैया जय सियाराम।
6: जय सियाराम गुरु जी।
1: आप सबों को जय सियाराम। आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी और श्री हनुमान जी की स्तुतियों के साथ। जय सियाराम।
3: जय सियाराम।

0: सूरजधारा
1: जय सियाराम श्रोताओं, रामरसधारा के अंतर्गत सुनते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण के साथ श्लोकों का उच्चारण स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों के साथ। जय सियाराम
2: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: देवी और सज्जनों, हमारे देश में अनेक रामायण मंडलियां हर मंगलवार या हर गुरुवार को रामायण पाठ किया करते हैं, और जहां पर भी रामायण पाठ किया जाता है वहां पर सुमिरनी अवश्य गाई जाती है। राम रसधारा की इस अगली भेंट के अंतर्गत पेश हैं सुमिरनी सौरथा स्टूडियो में उपस्थित बहनों के मुखारबिंद से। जय सियाराम।
2: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: देवी और सज्जनों, आज की तारीख 7 मई है और 7 मई 1861 को जन्मे थे बंगाल के मशहूर समाज सुधारक, कवि, कथाकार, गीतकार,

नाटककार, निबंधकार और चित्रकार श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी। साल 1913 में वे यूरोप के बाहर रहने वाले दुनिया के पहले साहित्यकार बने जिन्हें साहित्य नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बाद में जाकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने विरोध करते हुए अपना नोबेल पुरस्कार लौटा भी दिया था। वो रविंद्रनाथ ठाकुर थे जिन्होंने श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। इस 7 मई को हम श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी को और गांधी जी को नमन करते हैं। जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: रसधारा।
1: सो इसी के साथ ही आज का हमारा राम रसधारा ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों को, माला जी को, शिवानी जी को, सिमरन जी को और सीता मैया को कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। देवी और सज्जनों, अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ चार बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेजबानी की तैयारी में है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशक, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अफ्रीकी नेता और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। मॉरिशस में अमरीका के कार्यवाहक तथा समिट के आयोजक और कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ फ्लोरी अलीज ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन से जुड़े कई आर्थिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। और आज दोपहर को फ्लोरी लीजा ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामलाल के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की। कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ के अनुसार यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित होगा। विक्टोरिया अस्पताल का रेडियोथेरेपी विभाग बंद कर दिया गया है। सरकार की रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर अथॉरिटी ने इस सुविधा को तत्काल रूप से बंद करने का प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया है। अब कैंसर के मरीजों को सुल्फेरिनो के नेशनल कैंसर सेंटर में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। विदेश में बिहार में नई कैबिनेट का गठन। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के सामने 32 नेताओं ने ली शपथ। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेजबानी की तैयारी में है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशक, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अफ्रीकी नेता और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। ये देश के लिए नए साझेदार ढूंढना और अफ्रीका की ओर व्यापार मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अवसर है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मॉरिशस में अमरीका के कार्यवाहक तथा समिट के आयोजक और कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ फ्लोरी लीजा ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन से जुड़े कई आर्थिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। क्लोदेट जेओफा की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: 3000 अफ्रीकी एवं अमेरिकी प्रतिनिधि, कंपनी प्रमुख, निवेशक और उच्चाधिकारी अगले 26 से 29 जुलाई को मॉरिशस में एकत्र होने वाले हैं। 4 दिनों तक मॉरिशस वाशिंगटन और अफ्रीका के बीच आर्थिक आदान प्रदान का एक केंद्र बन जाएगा। शॉर्जी दफेयर क्रेग हेम्बेलमेयर ने कहा, मॉरिशस के चयन से अफ्रीकी महाद्वीप की ओर मॉरिशस को प्रवेश द्वार की तरह पेश करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं व्यवसाय को एक अहम कॉरिडोर पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए अफ्रीका और अमेरिका के बीच परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने की देश की कटिबद्धता की झलक मिलती है। अगुआ का भविष्य, जुलाई की ये शिखर बैठक एक केंद्रीय चुनौती की तरह प्रतीत, लेकिन इसके अलावा ऊर्जा ट्रांजिशन, ब्लू इकोनॉमी और नई टेक्नोलॉजियों पर भी बातचीत की जाएगी। कॉरपोरेट ऑन अफ्रीका की अध्यक्ष एवं सीईओ फ्लोरिजे लीजे ने कहा, कई वर्ष पहले प्रधानमंत्री के साथ पहली बार के लिए मुलाकात हुई थी, जब हम अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट अगुआ को पारित करने की कोशिश कर रहे थे। आप में बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि प्रधानमंत्री ने एक अहम भूमिका निभाई है। वे उन कम अफ्रीकी सरकारी नेताओं में थे जो अगुआ के हक में समर्थन जुटाने के लिए और मांग करने के लिए अमेरिका गए, कैपिटल गए, अमेरिकी कांग्रेस गए। इस तरह हम अगुआ और अमेरिका तथा अफ्रीका के बीच व्यवसाय की अहमियत जानते हैं, लेकिन मॉरिशस अन्य देशों के लिए एक प्रवेश मंच बना हुआ है। अतः ये शिखर बैठक मौका रहेगा सभी महत्वपूर्ण सेक्टरों की जांच करने के लिए, जिनसे अमेरिका और अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि को गति मिलती है, चाहे ऊर्जा हो, हरित ट्रांजिशन हो, स्वास्थ्य हो, आईसीटी हो, डिजिटल हो, फाइनेंस हो, मूल ढांचा हो या फिर कृषि उद्योग हो। ये शिखर बैठक मॉरिशस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शोकेस की तरह है। देश अपनी राजनीतिक स्थिरता, आधुनिक मूल ढांचा और अफ्रीका तथा एशिया के बीच एक रणनीतिक स्थिति दर्शाना चाहता है। मंत्री आदिल अमियामिया ने कहा, मॉरिशस के पास स्पष्ट उपलब्धियां हैं। हम स्थिर हैं, यहां पर मजबूत संस्थाएं हैं, एक सम्मानित न्यायिक प्रणाली, साथ में योग्य एवं द्विभाषी श्रम शक्ति भी। हम कमिसार सादेक और अफ्रीकी मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से अफ्रीका के साथ जुड़े हुए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल रही है, व्यावसायिक नीतियां बदल गई हैं, सप्लाई चेन भी बदल गई है और इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह के मंच तथा CCA जैसे संगठनों से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मॉरिशस 18वीं अमेरिकी अफ्रीकी शिखर बैठक के आयोजन के लिए तैयार है। यहाँ स्थल है, टीम है, सरकार है, कटिबद्धता है, लीडरशिप है और आवश्यक निजी सेक्टर की तैनाती भी है ताकि जुलाई की इस गतिविधि को खास रूप से कामयाबी मिले। 2025 की यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के अंतर्गत 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत की परियोजनाएं एवं संधियां साकार हुई, लेकिन आर्थिक सूचनाओं से ये शिखर बैठक मॉरिशस में अफ्रीकी देशों के लिए एक ऐसा मौका प्रदान करेगा जिसके दौरान वे वाशिंगटन के लिए अपने व्यावसायिक हितों का बचाव कर सकेंगे एक ऐसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जहाँ जियोपॉलिटिकल तनाव है और ताकतवर देशों के बीच होड़ बढ़ता जा रहा है।
0: विवरण रजनी बिकर का रहा और आज दोपहर को फ्लोरिलीजा ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की। कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ फ्लोरिलीजा के अनुसार यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे अगुआ के विस्तार के लिए 10 साल की अवधि की वकालत कर रही है। कैविंटा पेसा, गीता सुनाराइन।
2: अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 मॉरिशस में लगेगा और ये वित्तीय सेवाओं पर आधारित रहेगा। ये मॉरिशस को अफ्रीका और अमेरिका के बीच निवेश के एक मंच के रूप में स्थापित करने का अवसर रहेगा। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान अफ्रीका के लिए कॉर्पोरेट काउंसिल की सीईओ और अध्यक्षा ने अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट बढ़ाने का पक्ष लेने और इस संधि की वैधता की रक्षा करने के लिए लड़ने की कटिबद्धता ली।
3: What we want is 10 years. That's what we want. Whether we'll get 10 years, we don't know, but we're going to ask for it and we're going to push for it and we hope that Congress and the administration will support that because we do believe that AGOA is not just beneficial to African countries, it's also beneficial to the United States. U.S. companies that source from Africa, their workers, and also all of the people who are the customers and buy African products.
2: अफ्रीकी उच्च अधिकारियों और राष्ट्र नेताओं के अलावा इस शिखर बैठक में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल भाग लेगा जिसमें सरकारी और व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
0: समाचारों को हम जारी रखते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के नए कार्यकारिणी मंडल से भी ट्रेजरी बिल्डिंग में भेंट की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन द्वारा की गई मांगों पर भी गौर किया, विशेषकर चार धाम तीर्थ यात्रा को लेकर। ठेकेदार महिलाओं के समर्थन और लिंग समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नई उप प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी ने आज दो प्रतीकात्मक औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2026 में और फिर जेंडर पर आधारित सातवें हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग में जो यूरोपीय संघ के साझेदारी के साथ आयोजित किया गया। पहली मई से एनर्जी एफिशिएंसी एक्ट के तहत नए नियमों के लागू होने के बाद अधिकारियों ने बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। त्रिबेका मॉल में एक जांच अभियान चलाया गया जो देश के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक है। एक चेतावनी जारी की गई जहां तुरंत इसके प्रभाव दिखने लगे। अधिकारियों की निगरानी में सार्वजनिक इमारतें भी शामिल हैं जिनमें नगर पालिका भी है।
1: रात की 7:15 बजे त्रिबेका मॉल के पार्किंग स्थल पर कुछ खास लोगों का दौरा। एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के ये अफसर हैं। ये लोग शॉपिंग तो करने नहीं आए हैं, इस बार तो नहीं। कैमरे से बचते बचाते एक सिक्योरिटी एजेंट की मौजूदगी में त्रिबेका मॉल के एक अधिकारी को एक नोटिस प्राप्त हुआ। वजह यही, बिजली की बर्बादी। एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के टेक्निकल ऑफिसर लुडोविक आगात ने कहा, हम सभी लोगों से मांग कर रहे हैं कि वे अपना उपभोग कम करें। ऐसा नहीं हो सकता कि घर पर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं तो बाहर देखें कि हद से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में कानून लागू, आखिर त्रिबेका क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल सेंटर देश के बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक हैं। बिलबोर्ड्स और चमकीली बोर्ड्स कई किलोमीटर की दूरी से ही ये दिख जाते हैं, जैसे कि जहाज़ों को गाइड करने वाले हेडलाइट्स। बिजली का बिल एक महीने के लिए करीब 17 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। मैनेजमेंट को मांगों का अनुपालन करने के लिए 5 दिनों का समय, नहीं तो उसके विरुद्ध कदम उठाए जाएंगे। लुडोविक आगात ने आगे बताया, कानून के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। अगर उसे अपराधी पाया गया तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2 वर्षों तक की जेल की सजा भी हो सकती है। 1 मई से एनर्जी एफिशिएंसी एक्ट के नए नियमों के अंतर्गत ये कार्रवाई चलाई जा रही है। इस कानून के तहत तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिजली की बर्बादी का पता लगाया जाएगा। अभी के लिए खास एवं अहम सेवाएं संबंधित नहीं, जैसे कि अस्पताल या क्लिनिक, लेकिन बिजली बर्बादी का पता लगाने की कार्रवाई अन्य इलाकों में भी चालू, जैसे दिन के उजाले में स्ट्रीट लैंप जलाना, रात में सरकारी इमारतों में अनावश्यक प्रकाश व्यवस्थाएं, खाली फुटबॉल मैदान लेकिन जो रोशनी से भरपूर हो,

0: लुडोविक आगात ने ये भी बताया कि कानून सरकारी या निजी इमारतों के बीच अंतर नहीं करेगा। जिस भी इमारत को कंट्रावेंशन मिले उसे नोटिस दिया जाएगा। जिला परिषदों और नगर पालिकाओं पर भी नजर। प्रमाण कर्रा रुख कैट्रोबोन की तरफ। नगर पालिका के आंगन में एक दिन पहले क्रिसमस ट्री की तरह चमकने के बजाय रात के अंधेरे में डूबा हुआ। क्या उन्हें सचेत किया गया कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, कल रात ज्यादा अंधेरा था मानो किसी डरावनी फिल्म में कोई बंदराज हो। उधर त्रिबेका मॉल में क्या चमकीले बोर्ड दिन के दौरान कार्यरत? आज सुबह त्रिबेका मॉल के बिल बोर्ड एवं बोर्ड ऑफ थे, अतः संदेश मिलने की पुष्टि होती है।
1: नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई आज भी प्राथमिकता बनी हुई है। इस बात का जिक्र पुलिस आयुक्त ने आज पोर्टलिस में किया। वे मॉरिशस रूनियन संपर्क समूह की आंतरिक सुरक्षा उप समिति की कार्यवाही के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। इस सहयोग की बदौलत रूनियन और मॉरिशस की कानून एजेंसियां अब अवैध लेन देन के बारे में वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सक्षम है। मीगान पुनापनायकन, गीता सुनारायण।
2: ये रिपोर्ट पिछले 24 अप्रैल को फ्रेंच समाचार बुलेटिन में चलाई गई थी, जब मॉरिशस और रूनियन के बीच सहयोग की बदौलत ड्रग्स जब्त किए गए थे। एक महीना पहले ये रिपोर्ट चलाई गई थी, जब समुद्र में ये ड्रग्स जब्त किए गए थे। ड्रग तस्करी के खिलाफ संघर्ष में रूनियन और मॉरिशस के बीच सहयोग को ये दर्शाता है। अंदरूनी सुरक्षा पर एक सब कमेटी की बदौलत दोनों देश जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। इससे समुद्र में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर संसाधनों को एकजुट किया जाता है। अंदरूनी मामलों की सचिव फोंग वेंग पुरन कहती हैं, हर सब कमेटी में एक मुख्य मुद्दा होता है, रूनियन का, मॉरिशस का, और हम वास्तविक समय में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। यही नयापन है। मॉरिशस और रूनियन के बीच कई जानकारियां बांटने से ये नतीजे सामने आते हैं। इस गुरुवार को मॉरिशस और रूनियन के बीच कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्यों ने लाइन बराक्स में एक बैठक लगाई, जिसमें ड्रग तस्करी और मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ संघर्ष का फॉलोअप किया गया। जांच में जटिलता के चलते सहयोग जरूरी है। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजपाली कहते हैं, आपराधिक गिरोह प्रणाली की कमियों का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमें वैश्विक एकाग्रता और संचालित तरीके से काम करना चाहिए।
3: Que notre réponse doit être globale, intégrée et cohérente.
2: ये कॉन्टैक्ट ग्रुप 2011 में गठित किया गया था। इसमें तीन सब कमेटियां हैं, अंदरूनी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्याय विभाग। रूनियन की ओर से नागरिक सुरक्षा पर एक सब कमेटी कायम करने का प्रस्ताव रखा गया है। रूनियन प्रीफेक्ट के कैबिनेट डायरेक्टर बेनोर लाफोकिया कहते हैं, हमारे समान खतरे हैं, जैसे तूफान, जंगलों में आग लगने के। हमारे पास योग्य सेवाएं हैं मॉरिशस, रूनियन और फ्रांस में। साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सुरक्षा का विकास हो। दोनों टापुओं के बीच सहयोग की एक अन्य पहलू सड़क सुरक्षा पर आधारित है। कॉन्टैक्ट ग्रुप की अगली बैठक सितंबर में लगेगी।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने आज मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के नए कार्यकारिणी मंडल से भी ट्रेजरी बिल्डिंग में भेंट की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबेन द्वारा की गई मांगों पर गौर किया। चलिए मॉरिशस सनातन धर्म फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबेन को सुनते हैं।
4: चार धाम et que le Premier ministre y répond positivement, là, nous faisons une demande pour nous capables de gagner un subside, le ticket d'avion. Nous avons envie, nous, toute la famille hindoue, à least une fois, nous allons à Chardham. Et aussi, nous faisons une demande s'il est capable, cause avec le gouvernement indien, que nous capables faire nous bannes grands, bannes senior citizens, s'il est capable de gagner un hélicoptère, prendre des picotes liées pour nous aller et Kedarnath. Comment nous tout connaissons, Sanatan nous fait une place de Gangatalao. Alors, nous faisons une demande et un bâtiment là-bas, Shugan Shurans Leba Walfefen, qui est domette. Et si besoin fait une réparation, nous là pour faire l'Ottawa Onkos, nous gagnons sa place là quand nous avons des enfants capables de venir là-bas, faire méditation, faire Gurukul, nous expliquons. C'est une des plus places sacrées qui la communauté hindoue est là, c'est à Gangatalao. Nous ne demandons ni ça, ni aussi accepter positivement.

0: progressivement et en une bien rapide.
1: सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। विक्टोरिया अस्पताल का रेडियोथेरेपी विभाग बंद कर दिया गया है। सरकार की रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर अथॉरिटी ने इस सुविधा को तत्काल रूप से बंद करने का प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया है। निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि रेडियो एक्टिव उपचार से जुड़े अपर्याप्त सुरक्षा कदमों के कारण लोगों और पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम है। अब कैंसर के मरीजों को सुल्फेगिनो के नेशनल कैंसर सेंटर में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी का योगदान देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को दुगुना करना, मॉरिशस के लिए ये चुनौती पूरी तरह से संभव है क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत क्षमता है। इस बात की घोषणा कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने की। वे कुदा स्थित डॉक्स में आयोजित ओशन वीक के दौरान बोल रहे थे। इस सत्र का मुख्य विषय ब्लू कार्बन और जलवायु वित्त पोषण था। अन्य मुद्दों में तटीय क्षेत्रों का एकीकृत प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र से संबंधित कानून शामिल रहे। नौ मई को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह की 486वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा की पहल पर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पोर्टलिस में आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इस पर ज्यादा जानकारियां दी गई। याचना मिश्रा।
2: हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप दिवस मनाया जाता है। उनकी 486वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे, जबकि औपचारिक समारोह 10 मई को लगेगा। दस मई को कारोलिन के एमकाएस हॉल में औपचारिक समारोह दोपहर 2 बजे से शुरू हो रहा है। साथ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान से महाराणा प्रताप सिंह के वंशज के एक प्रतिनिधि यहां पर इस मौके पर हमारे साथ होंगे। सभी इसमें आमंत्रित हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की वर्षगांठ के अवसर पर बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। ये समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा और इसमें हमें पंडिताओं का सहयोग मिलेगा।
3: बेल विलेज नुपेनन प्रोग्राम कि नुमान पंडित रिप्रेजेंटे पर नुमान पंडित पंडिता et donc je suis aussi invité pour cette déposer।
2: इस प्रेस सम्मेलन के दौरान सभा के अध्यक्ष ने 30 मार्च को भारत में राजस्थान दिवस के अवसर पर मॉरिशस के डेलीगेशन की भागीदारी पर बात करते हुए सरकार को आभार जताया, जिसकी बदौलत ये दौरा सफल रहा।
1: विदेश में बिहार भारत में नई कैबिनेट के गठन के बाद गांधी मैदान में आज गुरुवार को एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में 32 मंत्री शपथ ले रहे हैं। समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को बादल कुछ घिरे रहेंगे, कल धूप खिली रहेगी, हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 25 से 27, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 5:45 और सूर्यास्त कल, जी हाँ, कल सुबह सूर्योदय 6:28 पर होगा।

शोक समाचार सुनिए। नंबर सी 11 NHDC एवेन्यू एम्ब्र मोंगुमे, नंबर सी 11 NHDC एवेन्यू एम्ब्र मोंगुमे, 74 साल के 74 years old जनाब फारूद मुसाफिर, जनाब फारूद मुसाफिर इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात आठ बजे इनके मकान नंबर सी 11 NHDC एवेन्यू एम्ब्र मोंगु से उठाकर दफनाने के लिए बुआ मौशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM। Mon seulement Sagittaire, golf roundabout Montchoisimé. Mon seulement Sagittaire, golf roundabout Montchoisimé. 62 साल के 62 years old श्री सत्यदेव धनुकधारी जिन्हें लोग दानिश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई हैं। वे पहले SMF कॉर्पोरल थे और कैकारी दर्श के मालिक भी। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी आशा देवी दनुकधारी के मकान मोसलमा साजितया गोल्फ राउंड अबाउट मोशाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काहो आकाशिया कुतेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। महादुलेन न्यूग्रोव में 67 साल की 67 years old कुमारी गीताबाई महादू जिन्हें लोग लीला नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई राजेश बाल्मीक महादू के मकान महादू लेन न्यूग्रोव से उठाकर मारी जाने की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड घों बाफू लाल माटी में 63 साल के 63 years old श्री जगदीश रामदने जिन्हें लोग संजय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी सती सावित्री रामदानी के मकान मिशन क्रॉस रोड घों बाफू लाल माटी से उठाकर लाल माटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। सेनेक रोड रिवर वॉक लेन प्लेन दे रोश में 58 साल की 58 years old श्रीमती संगीता रामनियाल पैदाशी नाम इंदर नारायण और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान सेनेक रोड रिवर वॉक लेन प्लेन दे रोश से उठाकर पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। कोकाहोल केनिया प्लेन मायों में 80 साल की 80 years old श्रीमती मती गणेश पैदाशी नाम कुनू और जिन्हें लोग सती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रेओल की रहने वाली थी। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी बेटी छाया मुरुलाई के मकान कोकाहोल केनिया प्लेन मायों से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कोकाहोल केनिया प्लेन मायों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। जानकी स्ट्रीट पुत्रदो विलाज में 79 साल की 79 years old श्रीमती बिदवंती मधु पैदाशी नाम सोहन और जिन्हें लोग वंती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी शनिवार को सुबह 10 बजे इनके बेटे संजय मधु के मकान जानकी स्ट्रीट पुद्रोदो विलाज से उठाकर बेलमो पुद्रोदो विलाज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 10 AM। और पाल्मा रोड कैटोबोन में 77 साल की 77 years old श्रीमती पुष्पा माला भूटन पैदाशी नाम राम और जिन्हें लोग मिला नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी शनिवार को दिन के

0: 1:15 बजे शनिवार को दिन के 1:15 बजे इनके मकान पाल्मा रोड का ट्रिबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 1:15 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी में ला लीजिए, इस वक्त रात के लगभग 6:30 बजे हैं।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम में। कैसे हैं जी, सब फिट एंड फाइन है ना? हम तो यहाँ पर एकदम ठीक है, बस आप लोगों के होने का एहसास अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वक्त शाम के 6:33 हो गए हैं, नई सोच कार्यक्रम लेकर के अभी पहुंच गए हैं, जहां पर आप लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक सिचुएशन, बस एक परिस्थिति, बस एक हालात से गुजर करके हम लोग वहां से निकल जाते हैं। तब जब हम घर पहुंचते हैं ना, इसके बारे में जब हम सोचते हैं, हाँ कुछ तो आज सीखने को मिला, कुछ आज हम लोगों को एक आइडिया मिला, और उस आइडिया आप लोगों तक साझा करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं जी। वेल दोस्तों, मैं आपका साथ दूंगा यहाँ पर रात के 9 तक। इसका मतलब ये है कि नई सोच 6:30 से लेकर के रात के 7 तक, फिर उसके बाद दिनों की आवाज़ का रकम 7 से लेकर के 9 तक का।

कभी कभी जब हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं ना, मेहनत के बाद मिलती हैं शाबाशियां। और इस शाबाशी से लेकर के हमको इतनी तसल्ली मिलती है कि हम क्या कहें। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी गुंजन सक्सेना, जहाँ पर वो एकमात्र ऐसी लड़की थी जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर के पायलट बनने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की और अंततः वो उस देश की, भारत की बेटी बन गई।

मैं थैंक यू सो मच आने के लिए, सुनने के लिए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस नई सोच कार्यक्रम में बस हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कड़ा परिश्रम करने के बाद भी उनको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी कभी गहरी चोट लग जाती हैं या फिर फिजिकली वे लोग इंजूर्ड हो जाते हैं, खासकर जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में है। लेकिन उसके अगले दिन लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए वे लोग जिम चले जाते हैं या फिर अपने कराटे सीखने चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि उनके मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि उनकी जो मानसिक शक्ति है ना, उनको इतने ज़्यादा ऊर्जा देते हैं कि फाइनली वे उस बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाँ, मुझे जाना है, स्थिति कैसे भी विकट क्यों ना हो, मुझे आगे बढ़ना है। और उसको कहते हैं एक ललक, एक चाह जो हम लोगों की जिंदगी में हमें अपनानी चाहिए। इससे आपको लगेगा कि कुछ पाने के लिए एक नई आशा सामने आएगी।

You're listening to Radio Manoranjan Abhi के साथ. Thank you so much कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. And of course, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जब एक इंसान को चोट लगती है, फिर भी उसके अंदर में उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो लड़खड़ाते हुए, लगड़ते हुए, डगमगाते हुए वहां से जा करके वो उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेंटल हेल्थ, बिकॉज ऑफ दैट मेंटल स्ट्रेंथ. और अगर वो जो मानसिक शक्ति मिलती है ना, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिलती है. उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ ही जाते हैं. और जिंदगी में हमें यही एक सीख मिलती है कि यस, मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो ताकत है. किसी भी सिचुएशन क्यों, कितने डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर मेंटली मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ तो मैं आसमान तक पहुँच सकता हूँ. मुझे लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैरी कॉम और ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल पाए, दिखे, वो अंदर से टूट भी गए थे, लेकिन उन लोगों का जो संघर्ष है वो जारी रहा. और आज दे आर समबडी, और वे लोग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं.

जी हाँ दोस्तों, जब ऐसे टाइम पर आपको जीत मिलती है तब मिलती है शाबाशियाँ, लेकिन उस टाइम पर जीत की से जुड़े जो जो जो खुशियाँ हैं उसके बजाय, खुशी मनाने के बजाय आप उस पल पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिस पल पर आप टूट गए थे, जिस पल पर आप रोए थे, जिस पल पर आपने बहुत संघर्ष किया, और उसी को सोच करके आपकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। एंड दैट्स द एहसास।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

वेलकम फॉर यो दिलों की आवाज कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मनोरंजन की लहरों पर इस वक्त आप अभी को सुन रही हैं वेटिंग फॉर यू ऑन 5250 6200।

जहाँ दिल तो दिल इस वक्त बदतमीज तो नहीं है, दिल रो मतलब दीवानगी से एकदम भरा हुआ है, बस आप लोगों के होने का एहसास अभी बाकी है मेरे दोस्त। रात बाकी और बात भी बाकी है, इस वक्त रात के 7:13 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। सो दोस्तों 402-80-70 ये जो नंबर है ना, आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे, उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यू मे ऑल्सो सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। एक्चुअली ऐसे टाइम पर बहुत सारे लोग किचन में बहुत ही बिजी हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो काम से निकल करके घर की ओर जा रहे हैं, और उनका मानना यह है कि अगर बहुत ही रोमांटिकली रोमांटिक गाना अगर उन लोगों के लिए हो जाए तो उनकी जो रात है, रात की जो शुरुआत है, वो बहुत ही अच्छी तरह से शुरू होगी जो होगी। जी हाँ दोस्तों, सो चलिए एक ऐसा गाना हम आप लोगों के खिदमत पेश करने जा रहे हैं जहां पर सुनने के बाद आप कहेंगे हाय हाय क्या बात है अभी। Yes, so we shall bring you down to the memory lane of the golden 90s. सुनने के बाद ही ऐसा लगता है क्या बात है। तो चलिए उन तमाम दोस्तों के नाम ये गाना जो विनोद राठौर और अगका याग्निक की आवाजों के साथ आप लोगों की रात और आपके दिल के हर एक तंत्री को झंकृत करने के लिए आ ही गई है जी।

0: अच्छा लगा ना?
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त।
0: पता है इसी टाइम पर जब मूड रोमांटिकली सेट हो जाता है तो इस तरह के गाने सामने आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हाँ वही मूवी जिद्दी, जिसमें हरिहरन और चित्रा सिंह ने एक बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिखाया था। मूवी का नाम है हाँ जिद्दी। मैंने कहा मेरे दोस्त। रवीना टंडन है और साथ ही साथ है सनी डियोल। फिर लोग चल चल करके इस तरह के जो गाना है वो मतलब गा रही थी। बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, मुझे पता है मेरे दोस्त। चलिए उन यादों को तरोताज़ा हम भी करते हैं इस गीत के माध्यम से।

दोस्तों इतने आसानी से मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग आए, बाहर आए, मुझे भी बहुत बहुत खुशी मिली। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत से करते हैं, चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन। हेलो अभी, दिस इज इयान। अच्छा ओके ओके, दैट्स वी डू हैव सचिन और साथ ही साथ इयान है। उन लोगों के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गीत जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स वी डू हैव दीदी विहान। ओके दीदी है और कह रही है कि विहान के लिए अगला गीत हो जाए जो त्वाबुची के रहने वाले हैं। वी ऑल्सो हैव यहाँ पर दादी जी शीला। अच्छा उसका नाम शीला है, क्या बात है, शीला की जवानी। ये गाना खासकर हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। वी ऑल्सो हैव ललिता फ्रॉम कालबासा। उन्होंने कहा कि अगला गीत स्पेशली उनके पोते के लिए हो जाए और बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है। चलाएंगे ऑफ कोर्स 5250620 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अगर आप मैसेज नहीं भेज सकते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-80-70 पर 402 आज 70 पर। कभी कभी ऐसे भी स्थिति आती है जहाँ पर हमारा दिल टूट जाता है। हमारा नहीं, मेरा नहीं, आप लोगों का, लोगों का नहीं। कुछ ऐसे भी है जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। और जब दिल टूट जाता है ना तो एक बहुत ही अलग तरीके का दर्द महसूस होने लगता है। वो दर्द हम आप लोगों की खिदमत पेश कर रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात के 7:43 हो गए हैं। रीटा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है फ्रॉम रिजबेल। आपने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति अजय और दो बेटों के नाम।

Yes, दोस्तों बहुत सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं ऑन 5250620. इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये गाना खासकर हम ललिता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो कालबास के रहने वाली हैं।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं। बताया जा रहा है कि आजकल ठंडी हवाएं भी बह रही हैं, बहुत बहुत नहीं लेकिन हल्की फुल्की ठंड महसूस होने लग गई है। इसका मतलब है सर्दी का जो मौसम है उन्होंने दस्तक दे दिया है हमारे मॉरिशस के आंगन में।

हवाओं के साथ हम भी यहाँ पर पहुंच करके आप सब लोगों के दिल और आप लोगों की जिंदगी और आपकी रात में लेकर के आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दिलों की आवाज का रकम। नमस्कार और आदाब आप सभी का, हम हार्दिक स्वागत करते हैं सेकंड आवर फॉर योर शो ऑनली ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आप खुद हमें फ़ोन करके या फिर मैसेज करके बताते हैं कि कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे, और ये गाना हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और दूसरे देशों से भी हैं, जैसे कि वी डू हैव प्रियंका फ्रॉम इटली में तितली बन करके उड़ रही है वहाँ पर बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। आपने इस गाने की फरमाइश की है, बहुत ही सुंदर गाना है, और उन्होंने कहा कि फाइनली उनका जो सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो गया है और उनको रिजल्ट भी बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो अभी से ही हम आपको कह रहे हैं बधाई हो, बधाई। अच्छा, वो सब तो ठीक है, मूवी का नाम है बधाई हो बधाई। उन्होंने कहा ये गाना उनके सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त इटली में जुड़े हुए हैं और वे एंजॉय कर रहे हैं हमारे शो को। प्रियंका, ये गाना खासकर आपके नाम।

और जब आप किसी से बेमतहाशा मोहब्बत करते हैं और उसके सामने आप कुछ नहीं बयां कर पाते हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरह से आप में पाई जाने वाली जो फीलिंग है आप कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो इस तरह की स्थिति, इस तरह की जो सिचुएशन है उभर करके सामने आता है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोनिश की मामा, रोनिश उगागा हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं, रोनिश नहीं, रोनिश के मम्मा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये गाना खासकर हम रोनिश की मामा के नाम डेडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोनिश को भूलेंगे, नहीं यार, ये तो हमारा दोस्त है। रोनिश और उनके लवली वाइफ के लिए भी ये गाना हम डेडिकेट कर रही है। साथ ही साथ वी डू हैव सैंपिया से संध्या, वो कह रही है कि अगला गीत स्पेशली हो जाए किसके लिए, बस उनके लिए। चलिए ये गाना खास कर हम आपके नाम डेडिकेट करेंगे। वेटिंग फॉर यू ऑन 5250-6200। अगर आप इस वक्त खाना खा रहे हैं तो हम आपको कहना चाहेंगे बोन अपेटिट, शुभ आहार।

हालांकि ठंडी हवाएं बह रही हैं और मूड भी रोमांटिकली सेट हो गया है, लेकिन मौसम यहां पर प्यार का है और इस प्यार का जो माहौल है बना हुआ है इस गाने की फरमाइश की है विक्रांत, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है फ्रॉम एबेन। उसकी नाइट शिफ्ट की शुरुआत हो गई है और हमारा जो गीतों का कारवा है जारी है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आशा ताई और किशोर दा की आवाजों में मौसम प्यार का ठिकाना फ्रॉम द मूवी सितमगढ़।

जो दोस्तों प्यार का जो कारवां है उसको हम यहाँ पर मेंटेन करते जा रहे हैं। जिंदगी क्या कहता है, एक्चुअली बहुत बहुत सीख हमें मिलती है जिंदगी से, और जिंदगी के इस सफर में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।

चलिए इस वक्त हमारे साथ रेहाना भी जुड़ गई है फ्रॉम फिनिक्स। आपने इस गाने की फरमाइश की है उनके लवली भांजी जालिला के नाम।

जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास ही मैं हूँ इस वक्त। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ड्राइव कर रही हैं या फिर घर पर बिजी हैं, एक रेडियो सेट है बैकग्राउंड म्यूजिक में, हम आपका साथ दे रहे हैं और इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। वी ओसो हैव पूनम इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है। डेफिनेटली हम उनके पति मनीषा और उनकी बेटी परितुष्टि के नाम चला रही है।

एक ऐसा वक्त था जहां पर बहुत सारे लोग अपने दिल की जो बात है वो खत के रूप में बयां करती थी, और उस खत में बहुत सारी बातें सामने भी आ जाती थी। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, लेकिन 90s में ये खत ही एक अलग तरीके का एक स्टाइल था अपने दिल की बातों को बयां करने का।

जी हाँ दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ. इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया. इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे पूछेंगे कब मिलेंगे, सो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट थर्सडे, क्यों नहीं अगला गुरुवार हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे एंड मिल करके बहुत सारी बातें करेंगे. तब तक अभी को दीजिए इजाजत. एंजॉय द गुड म्यूजिक ऑफ रेडियो मनोरंजन. टेक केयर. बाय बाय. लव यू एवरीवन.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. MBC TV programs की झलकियाँ
3: सर, पिछले 8 महीनों से हम एक ऐसे आदमी पर काम कर रहे हैं जिसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है।
4: अगर आंखें बंद नहीं कर सकते तो मुंह तो बंद रखो, पता नहीं कौन दुश्मन बन जाए।
2: शनिवार 9 मई को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म 10 2005 की ये मूवी जिसमें नजर आएंगे संजय दत्त और अभिषेक बच्चन। हिंदी फीचर फिल्म 10

0: भोजपुरी के धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: आज बिफे 7 मई 2026 के रात भोजपुरी तड़का में आप सबको एक बहुत बहुत स्वागत बा। ये बखत रात के 9:04 होल बा और आप ये बखत रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ल हवा। आपके साथ खातिर, आपके प्यार खातिर और आपके वफादारी खातिर बहुत बहुत शुक्रिया कि हर रात के 9 बजे आप भोजपुरी तड़का संगे जुड़ जाला जा। और आज भी हमेशा की तरह ये बात के पूरा ख्याल रही कि ये सब गीत जो चली वो सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद पर चलावल जाए। हमने संगे आप रहिए रात के 11 बजे तक, एक से बढ़कर एक गीत आपके खातिर चली और आपके फरमाइश भी एकर में शामिल रही। देशवा विदेशवा दीनू मीरा के आवाज में आप सब कोई के नाम जे देश में और विदेश से हमने के सुना था वजह।

रात के 9:10 होलबा और आप लोग बहुत प्यार के साथ साथ देवत हुआ जा बहुत बहुत शुक्रिया। एक के बाद एक फोन कॉल्स आई ले जाता और अगला जन गीत चली गीत के मांग कर ले हवन सजीद जे रोसिल से हवन और हमेशा की तरह आप सब सुने हो रालोक के नाम अगला गीत करत हवन बरसेला पनिया मुसल के धार राम तोहल सीता के आवाज़ में और ये गीत आप सब लोग के खातिर तो वो मंगते ही हवन लेकिन ख़ास तौर पर उनकर जन दोस्त हवन सरोवर और विदेश में हवन उनकर नाम भी तो चला एक साथ मुसल के धार के बरसे के जन आवाज़ बा और जन कहानी बा सुनी जा

0: हो गया।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

ममा के कंच पकड़ मची।

कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो भाई बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: एबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: एक खूबसूरत लड़की